एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ

0: डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। माधव कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे करने में शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं चलता, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवा देते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसका भाग 242 आज प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 7 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार की।

सुबह 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुनेंगी और उसके तुरंत बाद 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आज सुबह आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत, संपादन रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनते हैं सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 बजे सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर बाद 2:30 पर और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत, संपादन सहयोग काजल भदरगी का है और प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम को आप सुनेंगे 6:30 पर झरोखा, 6:35 पर समय रहेगा संध्या रंजन का। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे, 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत झलकी मुंशी इतवारी लाल, लेखन नरेश मिश्रा का, निर्देशक विनोद रस्तोगी, झलकी का नाम मुंशी इतवारी लाल। आठ बजकर 45 पर संध्या समाचार संध्या आप सुनेंगे और रात्रि 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल विश्वास पर, संगीतकार अनिल विश्वास, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये था आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 242।

घटता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक।

0: पंडित रोनू मजुमदार आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, पंडित जी एक बार फिर स्वागत है आज की इस कड़ी में, आपका नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी।
1: पंडित जी बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जानकारी है, कुछ श्रोताओं को जानकारी नहीं है, तो हम ये बता दें कि फिल्म देश परदेश है, फिल्म बेताब है जिसमें आपकी बांसुरी की सुरीली तान है, जब हम ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे। तो आप बातचीत के दौरान जिक्र कर रहे थे धर्मेंद्र साहब के बारे में, देव साहब के बारे में।
2: जी, सबसे पहले तो धर्म जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ
1: जी।
2: उसमें एक पंजाबी भी है
1: जी। जी
2: तो मेरे साथ तो पंजाबी में ही बात करते थे।
1: अच्छा, कौन कौन सी 9 भाषाएं आपको? हिंदी,
2: भोजपुरी, बंगाली
1: जी,
2: गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी तो, और भी शायद कोई छूट गया मैं बोलता हूँ। तो मेरे नाल उन्होंने तो पंजाबी गल करते सन मेरे नाल।
1: वाह।
2: तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे सनी को बेताब में, तो सनी भी स्टूडियो में आया हुआ था और धर्म जी भी आए थे। एक बड़ा मार्मिक एक दृश्य था फिल्म का। उस फिल्म में सनी देओल का बड़ा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता, और जो उसमें विलेन थे वो सनी को मारने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देते हैं, और सनी उस क्योंकि प्यार उसको बहुत ना
1: गले से लगा के
2: रो रहा है, और उसमें मेरी बांसुरी। और केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए
1: जी जी,
2: पंचम दा के राइट हैंड एकदम
1: जी।
2: केसी लॉर्ड ने एकोलाइट लगाया था और मैंने भी दिल चीर के बजाया डी के बांसुरी में
1: जी,
2: और वो ऐसे कि एक एक स्वर उस कुत्ते के खून बह रहा है और यहाँ बांसुरी में से आंसू निकल रहा है
1: जी जी। तो वो क्या यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं?
2: वो तो इम्प्रोवाइज था। जब हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं ना
1: जी,
2: तो हम लोग जैसे कि राग में इम्प्रोवाइज करके एक एक नोट कर करके वो नहीं करते, हम लोग वो सीन के मूड को देखते हैं
1: जी।
2: जैसे समझिए कि कुत्ता मर रहा है और पीछे बांसुरी बज रही है,

0: वाह,
1: ये
0: सचमुच दिल चीर देने वाली
1: दिल चीर
0: तान
1: देने
0: थी।
1: वाला वो सीन था। जब टेक ओके हो गया, बांसुरी के अलावा 40-50 वायलिन एक नोट को होल्ड किए हुए थे और उसके ऊपर बांसुरी बज रही थी,
0: ओ
1: और साथ में वाइब्रोफोन बज रहा था। और केसी लॉर्ड तो पारसी थे,
0: जी
1: और उनका छोटा भाई था भजी लॉर्ड, भजी ना बोलते हैं,
0: जी
1: केसी जी गुजर गए, भजी लॉर्ड अभी जीवित हैं,
0: जी
1: कमाल के लोग। और मैं तो खुद उनका दूसरे कारण से फैन हूँ, क्योंकि रूप तेरा मस्ताना में जो उन्होंने एकोडियन बजाया, तो वो सेंशुअलिटी एकोडियन से कैसे
0: निकाला
1: पैदा
0: जाता
1: हो सकती है ये उन्होंने बताया।
0: है।
1: और मनोहरी दास जैसे सैक्सोफोन प्लेयर
0: जी
1: उस
0: जी
1: पे हावी हो गए, वो ये केसी लॉडी कर सकते हैं।
0: जी जी
1: तो धर्म जी इतने शेर दिल थे, और पुत्र कमाल कर दिता यार, और तेरा
0: हाँ
1: जवाब नहीं, वो मैंने हंजू हंजू कहते ने पंजाबी
0: हाँ
1: विच,
0: जी
1: आंसू को हंजू कहते हैं, ते कहते मेरे हंजू आ गए, अखा तो हंजू आ गए, बड़ा बड़ी चंगी बंसरी कहते ने पंजाबी में, कहते बड़ा सुंदर बंसरी बजाया पंचम दा, ओए पंचम ओ कितों लाया ये मुंडे नू, ये
0: गजब।
1: लड़के को कहाँ से लाया। तो उस दिन से, उसके बाद उन्होंने स्टूडियो बनाया सनी, उस स्टूडियो का नाम ही रखा उन्होंने
0: जी
1: सनी,
0: जी
1: सनी सुपर साउंड। मैं जब भी जाता था, धर्म जी कभी शूटिंग से आके थोड़ा रिलैक्स होके पांव फैला के बैठते थे, तो मैं उनसे जाके हाथ मिलाता था, क्योंकि मुझे ये शौक था पहलवानी का थोड़ा,
0: अच्छा
1: तो मुझे
0: हाँ
1: मालूम था ये एक्चुअल रेसलर है
0: जी जी

0: एक बार दारा सिंह को उठा लिए थे ये।
1: जी, और फिल्मों में तो उनकी दहाड़ मशहूर है।
0: हाँ, तो उनके हाथ को जब मैं हाथ मिलाता था
1: जी
0: तो लगता था कि मैं कुछ 10 हाथ का ताकत और की हाल है बोल के जब हाथ पकड़ते थे तो लगता था हाथ टूट जाएगा मेरा। उस अनुभव के वजह से मैं हाथ मिलाता था।
1: जी,
0: ये जो पुराने एक्टर लोग थे, यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी,
1: जी
0: जब हमें और जीने की चाहत ना होती मैं बजाया मैंने, तो किशोर दा तो रुला दिए उस गाने को गा के। तो काका हम लोग बोलते हैं राजेश खन्ना को।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो काका उस वक्त भी जाके किशोर दा का पांव छू लिए। अब बताइए, किशोर दा तो उनसे बहुत बड़े थे
1: जी
0: उम्र में, मगर इंडस्ट्री में पांव छूने का इतना रीत नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत में है
1: जी।
0: उधर तो बस हाय हेलो हाय दादा नमस्कार प्रणाम करने का चलन कम है, मगर काका को मैंने अपने आंख से देखा किशोर दा का पांव छूते हुए
1: गजब।
0: कि दादा आज आपने जो गाया, मिलन से भी कठिन जुदाई तुम्हारी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते।
1: जी।
0: तो दादा ने जिस गाने को भी छुआ उसको अमर कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रोग्राम मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने कह दिया था कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बजाता नहीं, मगर बजाने में गया, तो चिंगारी जब गा रहे थे तो ऐसे सुर लगाए कि उसके अंत में एक पीस आता है, देखिए।

0: ये रन मैं भूल ही गया।
1: जी, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और दादा भी दादा, किशोर कुमार, किशोर कुमार, उनके जैसा व्यक्तित्व। बहुत दिन से इंडस्ट्री सोच रहा है कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, मगर उनका रोल करेगा कौन?
1: ऐसा जिंदा दिल इंसान,
0: ऐसा जिंदा
1: जिंदा
0: दिल,
1: दिल,
0: ऐसा कॉमेडियन, ऐसा एक्सेंट्रिक
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या करेगा। जो डाकिया डाक लाया को साइकिल में बैठ के गाया उन्होंने,
1: हरफन
0: वो
1: मौला, तभी तो उनको कहा
0: उनको
1: जाता था ना।
0: स्टूडियो में साइकिल लाना पड़ा, बोले साइकिल में जाऊंगा तभी, नहीं तो नहीं गाऊंगा।
1: जी,
0: गजब
1: गजब,
0: के आदमी थे।
1: बिल्कुल। तो ये तो किशोरदा की बातें हो गई, और देव साहब से भी जुड़ी कुछ बातें।
0: देव साहब से मुझे मिलवाया था बप्पी दा ने,
1: जी
0: वैसे बप्पी लाड़ी ने, मगर एक फिल्म में मैं पहली बार जो मिला उनसे, वो आनंद आनंद, सुनील आनंद, जो बाद में चल नहीं पाए, तो लॉन्च किया था उसको। और बीती जाए जाए जाए जिंदगानी, ये गाना था किशोरदा का,
1: जी
0: और अभिजीत का डुएट था। और अभिजीत को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे किशोरदा,
1: जी जी
0: जैसे बड़ा गुरु होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वहां भी देव साहब के, मैं बहुत खुश हूं इस बच्चे की बांसुरी सुनकर, जिंदगी। तो वो हर म्यूजिशियन के पास जाके देव साहब तारीफ करते थे। और उसके बाद देश परदेश, राजू, हम लोग राजू भाई कहते हैं राजेश
1: जी
0: रोशन
1: जी जी
0: को, उनका म्यूजिक था देश परदेश में,
1: जी
0: तो वहां भी मुझे पहचान गए। अरे तू कैसा है, क्या हाल है? तो उनके अंदर जो रोमांसिंग विथ लाइफ, उन्होंने जो किताब लिखी है, वो सचमुच पढ़ने लायक किताब है,
1: जी
0: रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद।
1: जी
0: तो देवताओं का आनंद उनके अंदर
1: भीतर,
0: था।
1: तभी तो सदाबहार हीरो कहे जाते हैं ना
0: हाँ,
1: आज भी
0: देव साहब
1: लोग।
0: जैसा
1: हाँ,
0: कोई नहीं होगा।
1: उस फिल्म में आपकी बांसुरी है ना,
0: मेरी
1: फिल्म
0: बांसुरी बैकग्राउंड
1: तो,
0: में है,
1: हाँ, तो उसका कुछ टुकड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे,
0: नहीं
1: याद है
0: वो
1: तो?
0: इम्प्रोवाइज्ड था, पूरा
1: अच्छा।
0: पूरा इम्प्रोवाइज्ड। टीना मुनिम को उसमें लॉन्च किया था।
1: जी।
0: और हाँ, मुझे याद है उसमें एक सीन में देव साहब रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका उन्होंने उम्र को तो कभी माना ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मरने के बाद कोई फोटो ना खींचे। उनके मरने के बाद का कोई फोटो कहीं नहीं है, लंदन में गुजरे।
1: जी,
0: हाँ, और चुपचाप
1: चले
0: बोले थे
1: गए।
0: कि मेरा अंत्येष्टि कर देना, चुपचाप, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, भगवान के आदमी थे।

0: तो उसमें बजाना था तो चंचल प्रकृति का बजाना था, जैसे
1: जी
0: हम लोग फिल्म में बजाते हैं तो कैसे होता है कि इतना सा पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल,

0: इसको ट्रिल बोलते हैं,
1: जी जी
0: और
1: अच्छा
0: फ्लटरिंग ये है। ये फ्लटरिंग है, और डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा, तो हम लोग का तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु। कल्पेश एक बार जरा तुक तुक सुना दीजिए, तुक तुक में गॉड गिफ्टेड है मेरा शिष्य, एक सेकंड उसको सुनिए।
1: जी
0: क्या क्लैरिटी है, देखिए
1: गजब, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है।
0: जीते रहो कल्पेश। जैसे वो बोलता है कि मैं भाग्यवान हूं ऐसे गुरु मिले, मैं कहता हूं मैं भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला।
1: क्या बात है,
0: जो इतना सुरीला।
1: तो ये चंचल प्रकृति की तान थी बांसुरी की,
0: जी, जो देश परदेश में मैंने बजाया।
1: जी
0: तो जब ट्रिल बजाया तो बोले कि उनका वही अंदाज, क्या बात है, क्या बात है
1: जी,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ट्रिल तो बड़ा अच्छा। एक एक शब्द उनको मालूम था कि इसको ट्रिल कहते हैं, कितना म्यूजिक में वो डीप थे।
1: जी जी
0: आपको तो मालूम ही है रफी साहब ने कितना रिटेक किया था गाइड के गाने के लिए।
1: जी जी
0: उसमें
1: जी।
0: दुख नहीं आ रहा था।
1: हाँ, फिर वो रोए थे
0: फिर
1: बैठकर, रोने पर फिर वो इमोशनल आया था। जी
0: मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आज बेताब का ये शब्बीर कुमार का गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया ये हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए।
1: जी।

0: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन है, तो उन्हीं को याद करते हुए उनके गीत हमने आज इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं छोटी छोटी बातें, इस फिल्म से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अजीर विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगुली माला इस फिल्म का गीत मीना कपूर और साथियों के स्वर में। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

ये आवाज थी पारुल घोष की। हमारी बात इस फिल्म का गीत था। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और अनिल विश्वास का संगीत था।

मुकेश का गाया ये गीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन था, उन्हें याद करते हुए हमने आज कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत आपको सुनवाए।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चले श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज के सुविचार के साथ। गौतम बुद्ध का कथन है, मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। तो ये था आज का सुविचार।

और अब आज का इतिहास डालते हैं एक नज़र 7 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। श्रोताओं, 1948 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई थी। 1978 में आज ही के दिन सोलोमन द्वीप ने यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1985 में आज ही के दिन 17 साल की उम्र में बोरिस बेकर विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। ईरान में शरिया कानून लागू हुआ था आज ही के दिन 1980 में। 1998 में आज ही के दिन पंडित विश्वमोहन भट्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिष्ठित दशाब्दी का सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति सम्मान मिला था। और 2003 में आज ही के दिन नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी।

और अब एक नज़र डालते हैं आज के दिन यानी 7 जुलाई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। 1656 ईस्वी में जन्म हुआ था आज एक दिन सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह का। 1883

वाराणसी में जन्म हुआ था आज के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 1914 में जन्म हुआ था आज के दिन प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास का। और 1981 में जन्म हुआ था आज के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का। और अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को हो गया था। उनमें से प्रमुख हैं भारत के जवान सैनिक कैप्टन विक्रम बत्रा का कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हुआ था 1999 में आज ही के दिन। श्रोता उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक व शायर अब्दुल कावी देशनावी

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे गोपी फिल्म का ये भक्ति रचना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में अब आइए नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बनी रह सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी।

कल दोपहर बाद अचानक मौसम बदला रोहतास जिले में और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। साथ में बारिश से गर्मी, उमस से राहत, तापमान में 2 डिग्री गिरावट। किसानों ने कहा बारिश से धान की रोपनी में आएगी तेजी। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रोहतास जिले में अगले सोमवार तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ वर्षा तथा कुछ स्थानों पर

जिला प्रशासन रोहतास द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन राजपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र राजपुर पर किया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद शमी मंसारी ने आम जन से अपील की है कि वे बेटियों के जन्म को गर्व और खुशी के साथ मनाएं तथा उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

शहर में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए सोमवार को अनुमंडल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे के आसपास मुख्य सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे किए गए अस्थायी कब्जे खाली कराए गए। अभियान का नेतृत्व एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी, एसडीपीओ 1 विप्लव कुमार ने किया। नगर निगम के कर्मी, पुलिस बल, प्रशासनिक कर्मी साथ रहे।

भोजपुर के आरा स्थित आरा क्लब में हुई 11वीं बिहार राज्य सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रोहतास जिले के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। जिले को एक रजत पदक मिला, एक कांस्य पदक भी मिला। प्रतियोगिता के पहले दिन अनुभव भारती ने दमदार प्रदर्शन किया, रोहतास के लिए रजत पदक जीता। अंतिम दिन ओपन मिक्स डबल में सासाराम के सत्यम मेहता और अनुभव भारती की जोड़ी उतरी। जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया और कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह रोहतास ने प्रतियोगिता में कुल 2 पदक जीते।

अब लीजिए सुनिए कैमूर जिले की कुछ गतिविधियां। कैमूर जिले में किसानों को तय कीमत पर आसानी से उर्वरक दिलाने के लिए उर्वरक निरीक्षकों ने अभियान चलाया। जिले के 60 उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। सोमवार को हुई जांच में नुआव प्रखंड की 2 दुकानें, रामपुर की 1, रामगढ़ की 1 दुकान में अनियमितता मिली। इन दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कैमूर जिला प्रशासन ने जनता की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रम कराया।

जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक अधिकारियों ने हिस्सा लिया, आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अब डालते हैं एक नज़र मौसम पूर्वानुमान पर। रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में आज 65 मिलीमीटर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 60% और न्यूनतम 30% रहने की संभावना है। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में हम आगे नजर डालेंगे समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर, लेकिन पहले हम सुनवा रहे हैं एक और गाना, और इस गाने को भी हमने लिया है दिलीप कुमार पर फिल्माया गया, और फिल्म का नाम है मधुमती। गायक कलाकार हैं मुकेश और साथी।

0: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी

0: के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में ये देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और इसे हमने लिया था नया दौर फिल्म से। साहिर की रचना थी और ओपी नैयर का संगीत, और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 8:20 हो रहे हैं। अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है पत्र आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आप सबकी पसंद पर जॉनी मेरा नाम फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मोना भाई मंसूरी, नजबुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली शवाना और शाहबाज। बक्सर बिहार से हमारे श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ग्राम पोस्ट खुरमाबाद वार्ड नंबर 5 से रामजी प्रसाद चौरसिया, लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, सन्नी चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया, विकास कुमार, भरत बाबू चौरसिया और चौरसिया परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए आप सब सुनिए जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत।

श्रोतो, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं बरसात फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गाने को सुनना चाहते हैं पठान टोली कलेर से हमारे श्रोता मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकात परवीन, सदा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, आफिया, तस्नीम और अलीशा। फोटानी चौक नारायण एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित ने भी इसी गाने को सुनना चाहा है। और आप सब हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुलकी वाली, फलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। तो लीजिए आप सब सुनिए बरसात फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से हमारा फार्मेसी कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं आप सबों की पसंद पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, और इस गीत के लिए पत्र लिखा है हमारे श्रोता महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। और आप सब हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, सवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा और आलम शेख। आप सब हैं ग्राम नहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल जयनाथ, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। तो आप सबों की पसंद पर हम पेश कर रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और पसंद आपकी कार्यक्रम के आखिर में हम सुना रहे हैं आप सबों की पसंद पर आंखें फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है रवि ने।

सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक और ढोली साकरा से हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार वैरागी। दतरेंगी से इसी गीत के लिए फरमाइश पत्र भेजा है भागवत वर्मा ने और लेवाई से हमारे श्रोता हैं गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और ये हमारे श्रोता हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, बंगलाघाट बक्सर से ललन प्रसाद और चंदा देवी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए आप सबों के लिए हम पेश कर रहे हैं आंखें फिल्म का ये गीत।

इसी गाने को सुनना चाहते हैं। नयका गांव धर्मशाला से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम कुछ ही पलों में पटना केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
3: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
2: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
3: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
2: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अब अंचलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रत्येक महीने

0: के पहले सप्ताह में अंचलवार समीक्षा करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। यह कर्मचारी आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: श्री शाह ने एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को मान्यता दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण चौथे वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। इस बारे में राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क या सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्र निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि और आवश्यकताओं के आधार पर किसी पार्क या सड़क का चयन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर नए पार्क या सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गौरतलब है कि आज लोगों की समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति शिकायत या समस्या के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 या सहयोग पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए

0: नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा, वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। उपचुनाव के लिए राजद ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस सीट से जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान उनका निजी राय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह पार्टी या सरकार की राय नहीं है।
1: उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए।
0: प्रदेश में पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती अब ई नीलामी सह निविदा का माध्यम से कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को देने का निर्णय लिया है। खान और भूतत्व विभाग के अनुसार अब खनन पट्टों का आधार मूल्य पहले की तुलना में अधिक होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खनन पट्टे में उपलब्ध पत्थर की वास्तविक मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इससे ई नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पर्यटन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में रहने के मामले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके 2 और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में अगर अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में

0: कांड दर्ज किया गया है, जो BNS की धारा 113(3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(26) के अंतर्गत दर्ज करते हुए। अर्थन अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
1: आरोप है कि मिल्की खानपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में था, जो बिहार ATS से जुड़े एक मामले में भी नामजद है। निगरानी जांच की टीम ने धनरुआ अंचल कार्यालय के लिपिक शैलेश कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिपिक परिमार्जन प्लस के तहत जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रिश्वत ले रहा था। भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रदेश में शराबबंदी कानून समाप्त होने की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरा के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि भ्रामक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भाषण की आवाज को AI से एडिट कर यह झूठा दावा किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम में पहली बार तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चंपत राय को राम राम, कृष्ण मोहन को कमान। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे। प्रभात खबर लिखता है, BRO के फंड के गबन से जुड़े मामले में बिहार समेत 11 राज्यों में CBI का छापा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार के मॉडल स्कूलों में शामिल की जाएंगी राजस्थान की विशिष्टताएं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, मानहानि केस में बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को किया तलब। आज अखबार की सुर्खी है, सक्षमता पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4th वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
3: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
2: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। सुबह 10:05 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा आवाज। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रोहतास जिला के शिवशाकर प्रखंड मोहम्मदपुर और पंचायत मोहम्मदपुर के गांव के लोगों से नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत। सुबह 10:30 लोकदम माधुरी कार्यक्रम में हम आप सुनो को सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और 10:45 पर होगा रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। दिन के 11 से हम आपको सुनाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे ईओ वाणी। इसमें युवा साथी सुनेंगे हमारी बात के अंतर्गत जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुकना सीखिए और प्रेरणादायी व्यक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर कुछ बातचीत होगी। संध्या 6:10 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी और राज्य इस कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट वार्ता का विषय होगा धान की रोपनी। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर सदानंद राय। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत और संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से। रात्रि 9:15 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 पर गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल और रात्रि 9:30 बजे हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 बजे से कार्यक्रम होगा चित्रपट ताराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9

0: बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म का ये गीत। अनजान के बोल थे और बप्पी लहरी का संगीत। और अब गीत मालिका कार्यक्रम में हम सुना रहे हैं बेताब फिल्म का एक गाना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

गीतमालिका कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ बरसाती फिल्मी गीत। अब हम सुना रहे हैं उदित नारायण और आलका याग्निक की आवाजों में मोहरा फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है बीजू शाह ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जान की कसम फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं।

0: अब आप सुनेंगे कोची पलों में विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान
3: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हर किस नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एस यू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
3: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
4: आपने दिल का महल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
3: इसे तकलीफ का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
4: आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती।
3: मैं वापिस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है। इससे पहले कि आपके और मेरे दरमियान कभी ना हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए, चलिए कहीं भाग चले।
4: ये आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियाँ जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है। मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। यह फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पिया देवदास।
2: क्या?
1: कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सको।
2: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश ना आने पाए।
1: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
2: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
0: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार, साल 1966।
3: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूं वो बदबख्त, वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है, वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगह दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए, फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूं ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
1: शंकर, शंकर मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ बस करो शंकर।
3: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
0: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
4: गाना खत्म हो गया सर का।
1: ओ, गाना खत्म हो गया। बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
4: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ।
5: चंपा, चंपा बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो 1 ही रुपया देकर टरका दिया करता, उसने 2 रुपए दिए भैया को।
4: अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी।
5: आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2।
0: लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए। जरा सुनिए कि दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रहे हैं।

0: कब आए?
1: सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए।
0: हाँ, इतना बड़ा झूठ।
1: इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल सौ सौ साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें एक जैसे झील में खिले हुए दो केवल देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठते हैं, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारे इन जुल्फों की छाव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा,
0: ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। शंकर,
1: तुम चली जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए सौ सौ साल का हो जाएगा।
0: शंकर,
1: रूपा।
2: दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें।
3: मैंने लोगों का अधिकार छीना। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। बानी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
1: मेरा भाई मर गया।
3: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर बानी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसानों में रहने के लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले।
1: मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं। ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम हैं, ये सब के सब मेरी तरह खूनी हैं। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।
2: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
4: ये तो डिमांड कंट्रोल
5: पुलिस वाला कहां से आ गया?
4: सुपरिटेंडेंट गुपरिटेंडेंट।
5: क्या
4: सुपरिटेंडेंट गुपरिटेंडेंट?
5: अरे क्या बकता है।
4: गुड मॉर्निंग।
5: हाथ छोड़।
4: गुड मॉर्निंग।
5: छोड़ हाथ।
4: गुड मॉर्निंग। वन टू थ्री फोर।
5: अरे वन टू थ्री फोर वाला हाथ छोड़। मैं कैसे हूँ?
4: अरे वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर।
5: तुमने थप्पड़ रखे।
4: एंटी फैन सेंटीमेंट।
5: क्या?
4: एंटी फैन सेंटीमेंट।
5: अरे हाथ सेंटीमेंट।
4: आया
5: अंग्रेजी बोलने वाला।
4: एंटी फोर।
5: एंटी फोर।
4: सेंटी फूस।
5: सेंटी फूस।
4: अटेन।
5: अरे रे।
4: अरे।
2: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
6: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
7: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी, कागजात पर साइन करवा लीजिए।
6: हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेटिव चो, तो जल्दी साइन कर दो।
8: थोड़ा देख लो,
6: अब देख लो देख लो, पर जल्दी। हाँ
7: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
8: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? क्यों सर,

0: अरे ये लोग तो बटाटा था, तुम आते और सिग्नेचर करके आए।
1: कौन लोग बटाटा था?
0: अरे यही लोग बटाटा था।
1: क्या बटाटा था?
0: कि तुम आते और साइन करते है कागज पर।
1: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब।
0: तो साइन नहीं करने का?
1: आई एम वेरी वेरी सॉरी, हां वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।
0: तो बच्चे बता तुम्हें खेल लेवा जाओ।
1: तुम्हें भी खेल लेवा जाओ।
0: होता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबू।
2: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगले आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
3: तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो।
4: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें?
3: यकीनन।
4: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो क्षमा पर निसार हो जाते। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है।
3: ये अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
4: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
3: तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
4: मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ। वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो मुझे मंजूर नहीं।
3: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघला कर एक रकाशा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो।
4: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
3: खामोश।
4: अगर आज शहनशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
3: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। लिहाजा मां बदौलत मुजरमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देना।
4: एक तंग दिल शहनशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहनशाह अकबर की मौत पहले होगी।
2: शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
5: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
6: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
5: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
6: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
5: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
6: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
5: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
6: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
5: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
7: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह।
8: और तुमने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई? वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
7: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
8: वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
7: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
8: समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल।

0: पिस्तौल
1: उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान।
0: मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
2: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
1: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
3: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
4: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।
5: ए भाई, ए, ए, ए भाई, ए भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का, बता दे ना भाई। अरे सब, ये सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब।
4: थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे इधर देखो क्या हो रहा भाई, अरे पूरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे, अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है, बुरी हालत है भाई, चलो। ओ भाई साहब, अरे कोई है, अरे कोई आओ, अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे। गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है भाई साहब, वो मर जाएगी। आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मेहनत कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, भाई साहब आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब।
3: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
6: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, जीवन संगी।
3: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम

दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों सफाई क्यों जरूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई एक अंतराल के बाद करते रहें।

0: नाली नहीं बनाई गई है, उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं घर का?
1: उसी भी निकल रहा है, कचिए में ही निकल रहा है।
0: तो फिर गली में भी जमा होता होगा? होता है।
1: हाँ होता है।
0: जब गली में जमा रहता तो आने जाने में परेशानी होती होगी?
1: परेशानी है, बहुत है।
0: बहुत परेशानी है।
1: नली बन जाए तो अच्छा हो जाता है।
0: बिजली रहती है आपके यहाँ?
1: बिजली रहता है।
0: बिजली रहती है। बिजली की बिल कम आती है या ज़्यादा आती है या ठीक आती है?
1: ज़्यादा ही आवेला बिजली।
0: कोई दिक्कत नहीं है
1: ना?
0: वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज ठीक है।
0: मोटर चल जाती है वोल्टेज से?
1: मोटर चल जाती है।
0: कोई दिक्कत नहीं होती?
1: दिक्कत नहीं है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: नहीं मिल रहा है।
0: अभी नहीं मिल रहा है या कभी नहीं मिला?
1: कभी नहीं मिल रहा है।
0: कभी नहीं मिला। नल लगाई गई आपके घर में?
1: लगी है, नहीं जा रहा है।
0: आपके आसपास के घरों में नल लगी है?
1: सबका घर में नल लगे है, लेकिन किसी घर पर नहीं जाता।
0: किसी घर में नहीं आ रहा है। टंकी बनाई गई है?
1: हाँ टंकी बन गई है।
0: आपके गांव में चूंकि तीन वार्ड है तो तीनों वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है या कुछ वार्ड में हो रहा है?
1: कुछ वार्ड में हो रहा है।
0: हो रहा है। जिन जिन वार्डों में पानी का सप्लाई किया जा रहा है वो कितनी बार किया जा रहा है?
1: बहुत दिन से बंद है।
0: मतलब उधर भी नहीं आ रहा है अभी? पहले कितनी बार आता था?
1: पहले तो आते रहे।
0: दिन भर में कितना बार आता था?
1: दिन भर कहाँ वेला, एक सवेरे थोड़ा आई नहीं तो बंद हो जाए।
0: अच्छा, एक ही बार आता है? जो पानी आता है उसको लोग पीते हैं, पीने के काम में लेते हैं?
1: हाँ।
0: साफ पानी आता है?
1: हाँ, साफ आता है।
0: अच्छा, जब वो पानी नहीं आ रहा है तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं?
1: पीते हैं इधर जो सलाकर चापाकल से।
0: अच्छा, चापाकल, निजी चापाकल से। आपके यहाँ स्कूल है?
1: हाँ स्कूल है।
0: प्लस टू स्कूल है?
1: हाँ।
0: 11-12 तक पढ़ाई होती
1: हाँ,
0: है
1: हाँ।
0: स्कूल में बाउंड्री है?
1: हाँ, बाउंड्री है।
0: बाउंड्री है
1: हाँ।
0: पानी का इंतजाम है?
1: हाँ।
0: पानी रहता है ना। अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कहाँ कराते हैं? चूँकि आपके यहाँ तो उप स्वास्थ्य केंद्र है नहीं?
1: नहीं।
0: तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने?
1: आलमपुर, सासाराम, यही ना।
0: आपके पंचायत में है कि नहीं कोई उप स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल?
1: विश्रामपुर में है।
0: विश्रामपुर में है
1: हाँ।
0: वहाँ जाते हैं कि नहीं आप लोग?
1: जाते हैं।
0: इलाज होता है?
1: हाँ इलाज होता है,
0: हो जाता है। कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, सीरियस हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं आप लोग?
1: ले जाते हैं सासाराम, बनारस।
0: सासाराम जाना पड़ता है। खेती करते हैं?
1: खेती थोड़ा मोड़ा होला।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: यहाँ धान और गेहूँ।
0: पटवन कैसे करते हैं?
1: पटवन या नहर है ये नहीं?
0: नहर जाती है ना बगल से?
1: जाती है तो नहीं लगता है यहाँ पर।
0: नहर का पानी आपके यहाँ खेतों में नहीं आता है?
1: नहीं, नहीं आता है।
0: क्यों नहीं आता है?
1: माइनरे नहीं है,
0: दूर पड़ती है नहर।
1: नहर दूर है, माइनरे नहीं खनाया है।
0: तो पटवन आप लोग कैसे करते हैं?
1: और भगवान भरोसे होला
0: बारिश के पानी पर। बारिश नहीं हुई तो
1: मुहर हो जाएगा,
0: पैदा नहीं होता है।
1: नहीं।
0: सब्जी की भी खेती करते हैं आप लोग?
1: हाँ हल्का फल्का खाई पिए भर।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शिवसागर प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव के लोगों से की गई बातचीत। मोहम्मदपुर गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडिकर की आवाज़ों में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। फिल्म का नाम है हिना।

0: दोस्तों, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आप हिना फिल्म का गीत सुन रहे थे। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। मोहम्मदपुर गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। गांव के कई लोग हमारे बीच अभी खड़े हुए हैं अपनी बात बताने के लिए। समय अभाव के कारण सबकी तो बात हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से और बात कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
1: नाम अर्जुन कुमार पड़ेगा सर।
0: गांव का नाम?
1: मोहम्मदपुर।
0: पंचायत?
1: मोहम्मदपुर।
0: आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं गली के बारे में? सभी बन चुके हैं या कुछ बाकी भी है?
1: गली तो बन चुका है सर।
0: सभी गली बन चुकी है?
1: गली बन चुका है। गली में
0: कोई भी गली बाकी नहीं रह गई है?
1: नहीं, गली तो कोई अभी बाकी नहीं है।
0: जब गली बन चुकी है सभी लगभग, तो उसमें आने जाने परेशानी होती है कि नहीं बनने के बाद भी?
1: नहीं, पानी नहीं लगता है, पानी का निकासी
0: निकल जाता है।
1: हाँ, पानी निकल जाता
0: है। नाली बनेगी है आपके यहाँ की गलियों में?
1: हाँ, नाली बना है।
0: सभी गलियों में बनी है?
1: कुछ में बनी है, कुछ में नहीं।
0: तो जिन जिन गलियों में नाली बन चुकी है, उन गलियों के लोगों के घर का पानी उस नाली से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: निकल जाता है।
0: निकल जाता है, गली में नहीं जमा रहता है?
1: नहीं नहीं, झूठ।
0: जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है, वे लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
1: अब वो अपना सुविधा, खुद गाढ़ा खनकर पानी बटोर कर वो फेंकते हैं।
0: अच्छा, फेंकते हैं, गड्ढा खाद देते हैं
1: जी,
0: उसी में जमा होता है
1: जी,
0: फिर बाद में फेंकते हैं?
1: फेंकते हैं।
0: बिजली रहती है आपके यहाँ?
1: हाँ, बिजली रहती है।
0: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज सही तो अभी नहीं है।
0: अभी ठीक नहीं है?
1: सही,
0: पहले ठीक रहता था?
1: पहले ठीक रहता था, वोल्टेज में कमी है, वोल्टेज अप डाउन करता रहता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक पंखा भी चलना मुश्किल हो जाता
0: है। बिजली के तार के बारे में बताइए, तार ठीक है या जर्जर हो चुका है?
1: जर्जर तो हो चुका है, क्योंकि एक बक्सा पे अनेक तार है, वो सब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कर्मचारी लोग।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है?
1: जी है।
0: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
1: एक 8 तक ले है, और फिर वहाँ पे जो टोकरा में है उसका भी
0: रास्ता +2 तक।
1: हाँ,
0: सरकारी है
1: जी।
0: अच्छा, उसके बारे में कुछ बताइए, बाउंड्री है कि नहीं स्कूल में, पानी की व्यवस्था है कि नहीं?
1: 8 क्लास तक ले जो है मिडिल स्कूल, इसमें सब सुविधा है, लेकिन वहाँ पे जो है हाई स्कूल, वहाँ पे रास्ता भी नहीं है।
0: वहाँ जाने का रास्ता नहीं,
1: नहीं
0: है?
1: रास्ता
0: कैसे जाते हैं शिक्षक या बच्चे?
1: टोकरा बगल जाते हैं।
0: तो बरसात में पानी भर जाता हो तो बंद हो जाती होगी स्कूल?
1: यार धर कर,
0: आर
1: बरसात में पानी जब भर जाता है तो यही स्कूल में पढ़ाई चलता है।
0: उसकी पढ़ाई यहाँ आ जाती है। खेती करते हैं?
1: जी, खेती करते हैं।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: धान, गेहूं, रहर, दाल का जो होता है।
0: सिंचाई कैसे करते हैं?
1: पटवान, यही भगवान बरस गए तो बरस गए, नहीं तो सेंसेबुल जहाँ भी है वो लोग से पानी लिया जाता है।
0: आपके बगल से नहर गुजर रही है
1: जी,
0: उस नहर के पानी का उपयोग नहीं करते हैं आप लोग?
1: लगभग नहीं करता है, बाहर नहीं खाना आया है तो कहाँ से आएगा
0: पानी? नहीं आ पाता है?
1: नहीं।

0: लगता है।
1: क्या कमी है उसमें?
0: उसमें यही कमी है कि बाहर खाने में जो भी दिक्कत रुपया होगा, तो अभी खाना नहीं है, खाना जाएगा तो खुद पानी लगने लगेगा,
1: आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
0: नहीं,
1: और कुछ कहना चाहेंगे
0: जी?
1: बोलिए।
0: ये जो हम लोग का पानी पीने का बहुत दिक्कत होता है, जिसका पास तो मान के चलिए सेंसेबल है तो उसका तो सुविधा है, फिर भी अगर बारिश वरिश हो जाता है, लाइन कट जाता है, तो पानी का पूरा दिक्कत हो जाता है, पानी वहाँ से स्कूल से लाना पड़ता है।
1: गांव में चापाकल नहीं है?
0: चापाकल है पर बना नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है व्यक्ति।
1: सरकारी चापाकल है
0: जी, यहाँ पे भी है, मोड़ पे भी है, उधर भी है।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी नहीं सप्लाई हो रहा है?
0: पानी नहीं आ रहा है।
1: पहले आ रहा था?
0: हाँ पहले आ रहा था, कम से कम 1.5 महीना हो गया है बंद,
1: नहीं आ रहा है।
0: नहीं है
1: तो फिर आप लोग पानी पीते कैसे हैं?
0: वही जाकर लाते हैं पानी, उतना दूर से स्कूल से,
1: वहाँ से लाना पड़ता
0: जी
1: है। कुआं है कि नहीं आपके यहाँ?
0: नहीं कुआं नहीं है,
1: पुरानी कुआं भी नहीं है।
0: पुरानी कुआं उस तरफ में है, पश्चिम तरफ में, तो वो वहाँ से बहुत दूर पड़ेगा।
1: बहुत दूर पड़ेगा
0: जी।
1: मोहम्मदपुर गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये गांव कैमूर पहाड़ी के बगल में बसा हुआ है, बिल्कुल नज़दीक बसा हुआ है, और कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं। एक और व्यक्ति से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नाम अपना बता दीजिए।
2: हमारा नाम है मनोज।
1: गांव का नाम?
2: मोहम्मदपुर।
1: पंचायत?
2: मोहम्मदपुर।
1: आप अपने गाँव के गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुके हैं या कुछ बनानी अभी बाकी है?
2: इधर तो बन गया है।
1: बन गया है, कोई बाकी नहीं है?
2: ना बाकी नहीं।
1: जब गली बन चुकी है तो आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: परेशानी नहीं हो रही है,
1: कोई परेशानी नहीं
2: ना।
1: नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
2: नाली बनी हुई है,
1: सभी गलियों में बन चुकी है।
2: नाली बनी हुई है, लेकिन नाली टूटी हुई है अभी, उसका मरम्मत देखिए, जहाँ जहाँ ढक्कन सब टूट फूट गया है, ढक्कन नहीं लग रहा है, गाड़ी उलट रहा है। किस
1: आपके गाँव में जो पतली गली है उसमें नाली बनाई गई है कि नहीं?
2: नहीं, नाली बनी हुई है,
1: उसमें बनी हुई है। पानी निकल जाता है बनी हुई नाली से?
2: हाँ, कहीं कहीं प्लास्टर भी नहीं हुआ है, उसका अधवेसर हुआ है, आधा काम हुआ था बाकी।
1: बिजली रहती है आपके यहाँ?
2: हाँ बिजली रहती है,
1: कोई दिक्कत नहीं?
2: ना दिक्कत नहीं है।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोग को मिल रहा
2: नहीं
1: है?
2: मिल रहा है?
1: नहीं मिल रहा है,
2: नहीं मिल रहा है।
1: अभी नहीं मिल रहा है या कभी नहीं मिला?
2: पहले तो मिला, कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी को मिला भी नहीं।
1: आपके गाँव में चूँकि 3 वार्ड है तो तीनों वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है।
2: अपने वार्ड के बताएंगे ना,
1: आपके वार्ड में पानी नहीं सप्लाई हो रहा है, फिर आप लोग पानी पीते कैसे हैं?
2: पानी पीते कैसे हैं, मान लीजिए घर का भी नल जल सब सूख गया, समसेबुल का पानी इधर से उधर से पट रहा है, तो कहीं कहीं कुछ समसेबुल चलाता है तो आदमी पानी रुक रुक कर पी लेता है, वो भी देने में परेशानी है, कोई दे रहा है रोज पानी देगा कोई? बहुत परेशानी है, नल जल ऐसे भी दिक्कत है।
1: आपके गाँव में कुआँ है या नहीं?
2: कुआँ तो सब घेरा गया
1: है लेकिन कामयाब नहीं है।
2: खत्म खत्म।
1: खेती करते हैं आप?
2: हाँ।
1: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
2: अरे खेती में धान गेहूं है और क्या है बस।
1: पटवन कैसे करते?
2: पटवन बस समसेबुल है, भगवान का भरोसा है।
1: बगल से नहर गुजर रही है,
2: एक बूंद पानी नहीं आता है।
1: क्यों नहीं आता है नहर का
2: पानी? आता है, माइनर क्लियर नहीं है,
1: माइनर नहीं बना हुआ, इस वजह से। अगर माइनर बन जाएगा तो
2: हाँ सब हो जाएगा,
1: परेशानी दूर हो जाएगी,
2: दूर हो जाएगी।
1: आपके यहाँ स्कूल कौन सी है?
2: स्कूल है बगल में मोहम्मदपुर, हाई स्कूल भी है और माध्यमिक विद्यालय भी है,
1: प्लस टू तक है। स्कूल के बारे में कुछ कहिए बताइए।
2: बाउंड्री है, रास्ता नहीं है उसका,
1: रास्ता जाने का नहीं है?
2: नहीं है बिल्कुल।
1: तो फिर जाते कैसे हैं बच्चे?
2: परेशानी से, बहुत परेशानी से,
1: बहुत परेशानी से जाते हैं। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के मोहम्मदपुर गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ का ये अंक कैसा लगा आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन कोड 821115। आप अपनी राय मेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashwanisasaram@gmail.com akashvanisasaram@gmail.com। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ।

स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी के साथ सारम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोकमाधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए एक किसानी गीत शारदा सिन्हा के स्वर में, और इस लोकगीत में एक किसान की तुलना सैनिक से की गई है। आइए सुनते हैं।

शारदा सिन्हा के गए इस किसानी गीत के बाद लोकमाधुरी कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं एक देवी गीत। गायक कलाकार हैं मुन्ना सिंह।

मुन्ना सिंह के गए इस देवी गीत के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। हमारे केंद्र से अब दीजिए सुनिए रसरंग कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। आरंभ में सुनते हैं ये भक्ति रचना।

रसदार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। कलाकार थे राजेश तिवारी रतन। अब हम सुन रहे हैं गुंजन सिंह की आवाज़ में रविंद्र ओझा की ये रचना बदरा रे।

तनु प्रियंका के गाय राजा राजेश तिवारी की इस रचना के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब हम कुछ ही पलों में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो

0: स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फकीर की ये गजल।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना, जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एल्बम का नाम है सिलसिले, जगजीत सिंह की आवाज, शब्दकार जावेद अख्तर, संगीत जगजीत सिंह का।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

अबके सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी

0: निर्णय लिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से, तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ, संगीत है अनिल बिस्वास का।

ஆகிறேன்.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते।

0: थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजाद लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में एहसान रिजवी के बोल हैं।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन। हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएं

0: सब उनके साथ घटित हो रही है और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसकी उसमें आपको क्या विशेषता नज़र आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन झा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: लगी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कटक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी
1: ओ नैना जब नहीं है

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मोला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ गई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ गई है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ गई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत खास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब कि कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और बलबीर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुगल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमती का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, एक कालजयी रोमांटिक गीत है, संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

सुना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज, संवाद आज भी याद किए जाते हैं। जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ, ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि

संघर्ष का ये जो गीत है, दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया, और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सबके चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो इसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान है, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने

किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आजाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर के साथ जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है, और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध

लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आंख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना, दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयां नजर भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 600 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की सभी पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और आतंकवाद के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 2 लेन से अधिक लेकिन 4 लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर एनएच की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले पुलों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल की वसूली केवल फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, दो पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों को नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को कयाची में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक, विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में 10 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी 4वें वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण 4वें वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 6,715 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ibps.in। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई अथवा बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.intiaanraialways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

0: उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: यानी 621 क्लार्स पर 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाई हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।

0: इस गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर
2: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन

0: गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास

0: की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल उद्यान भी, संगीतकार श्री रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखी सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कभी ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: जी डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है।
1: लाइक, कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
2: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं। और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं।

0: किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन
0: जी
1: जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
0: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपने बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हैं हम भी
0: जी,
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं
0: जी।
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
0: जी। बिल्कुल
1: याद है
0: जैसे
1: आपको?
0: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
1: टेढ़ी खीर
0: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
1: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलती ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वह सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
0: जी,
1: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
0: वैसे
1: थे।
0: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते
1: तो
0: थे।
1: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती
0: जानते बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
1: जाता है,
0: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
1: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है। लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ,
0: दरअसल
1: किस तरह से वो आगे बढ़ी।
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है, तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल।

0: इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: सकता है और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल जो उनकी कंपनी है आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
1: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
0: जी।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वह यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए।
3: हाय

0: ममता जी, आज के समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नहीं घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है, और कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है।
0: और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया। वो भी अभी एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं

0: उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए
1: जी।
0: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं, सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
1: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चल रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: है। बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं, पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें। अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे
0: हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर

0: में उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका ये कहना है।
1: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी पोस्ट करते हैं, और कुछ लोग
0: और
1: अपना डांस
0: तो
1: का
0: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
1: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
0: बहुत सारे,
1: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है
0: सोशल मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
1: और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती
0: जी,
1: है।
0: जी।
1: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी, बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहां पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को यह एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं, वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो में गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला, मोल भाव करना वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं, उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूं, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूं।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूं कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूं घर से सोचकर निकलती हूं कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल
1: वहां पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं,
0: रहे।
1: बिल्कुल।
0: अब एक श्रोता
1: और
0: ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें, कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: ये बात
0: करी
1: तो है।
0: पत्ता

0: करी
1: अभी
0: पत्ता भी
1: डाल दो।
0: डाल दो।
1: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो 2 या 3 दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल
0: बिल्कुल,
1: भाव के लिए।
0: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
1: और आप जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं
0: बिल्कुल, आज 1.5 चावल की खिचड़ी पक रही
1: कैसे?
0: है। देखिए, जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है, या कुछ अलग थलग बात करता है, या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
1: मुर्गे
0: श्रोताओं ने
1: की
0: लिख भेजा
1: एक
0: है कि
1: टांग, ये भी एक
0: हाँ,
1: मुहावरा है।
0: ये भी एक
1: अब
0: पॉइंट।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
0: बिल्कुल, ये भी होती है जहां अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना है, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में 1.5 चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया 1.5 चावल की खिचड़ी वाला।
1: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और
0: जी
1: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा, ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूं, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी, लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
0: जी
1: इस तरह के मुहावरे, तो वहां पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
0: जी
1: तो अर्थ बदल जाता
0: अर्थ
1: है।
0: बदल जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है। ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में 1.5 चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है,
0: जी
1: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
0: जी
1: तरह के
0: जी जी
1: डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है, आइए भाभी जी आइए ले लीजिए, लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा, तो
0: बिल्कुल,
1: ऐसे

0: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे ही कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं, देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना, तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है,
1: तो 100 रुपए में मिल जाएगा।
0: 100 रुपए
1: आज तो हम सबकी, हम आप भी खिचड़ी पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है, कारे कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा। सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के, देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है। लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है, वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है, तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हां, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी। जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो
1: जी।
2: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीट माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से तो ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो दो ढाई साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन दिया।

0: आए तो एक नौकरी के लिए आए।
1: नौकरी के लिए आया
0: अच्छा।
1: मुंबई में। मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
0: जी।
1: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था 2 साल ऑलमोस्ट, वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि फोर इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
0: जी, ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहां शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
1: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
0: जी
1: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
0: हाँ।
1: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था,
0: जी
1: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है,
0: हाँ
1: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
0: हाँ हाँ
1: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
0: एक
1: थे।
0: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ, हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
1: जी
0: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
0: क्या
1: था,
0: बात है, क्या बात
1: तो आई नेवर इमेजिनड एनी अदर
0: है। वाह वाह वाह
1: प्रोफेशन।
0: वाह।
1: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो
0: हाँ
1: नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
0: हाँ
1: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
0: हाँ
1: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
0: जी।
1: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
0: जी
1: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
0: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
1: बहुत ज्यादा
0: ये
1: मैं
0: कितने तने दिनों तक चला?
1: ये सर बहुत चला ये, बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए जब मेरा पास आउट हो गया, मैं
0: जी।
1: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
0: अच्छा
1: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
0: हाँ
1: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं। तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
0: अच्छा
1: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
0: जी।
1: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है।
0: ओह
1: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
0: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
1: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
0: हाँ
1: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
0: हाँ
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
0: वाह,
1: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: ये
0: गाना
1: एक
0: है,
1: बहुत खूबसूरत सा गाना है।
0: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत, क्योंकि
0: हाँ
1: यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे
0: जी
1: अच्छे से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम
0: हाँ
1: थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था,
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते। बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के। पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
0: सहज और
1: तो
0: स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी।
1: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते,

0: मराठी मेरी मदर टंग है
1: जी जी
0: मी मराठी है, बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो फोर इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
1: जी
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है।
1: हाँ।
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है,
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में,
1: जी
0: तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
1: जी
0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माय थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूं रेगुलर, सो दैट इज थिंग।
1: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं

0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग. मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ. बट
1: हाँ
0: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर. सो
1: अच्छा,
0: दैट इज थिंग.
1: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ.
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है. लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है.
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये
1: हाँ
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए कुछ। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी।
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार दो बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रेनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो

0: वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
1: अच्छा।
0: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
1: जी
0: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
1: अच्छा।
0: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है, और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार
1: जी
0: था,
1: जी
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता
1: बिल्कुल
0: है, तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एट हैपन इन माई लाइफ, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते
1: हाँ,
0: होंगे।
1: बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
0: जी
1: इसमें सारे बड़े नाम,
0: बहुत
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए, क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और
0: हूँ।
1: मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
1: जी
0: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया,
1: ओहो
0: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं,
1: जी।
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
1: हाँ हाँ
0: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो
1: जी
0: हम
1: जी
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
1: हाँ
0: करने का,
1: हाँ
0: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
1: जी
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था, तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है, जैसे
1: अच्छा
0: अरे आप दिन भर साथ में थे सर क्या प्रॉब्लम है, ले एक मिनट बात करनी है,
1: हाँ
0: तो वो आए, बटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में,
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया,
1: अच्छा
0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। ही लाफ द सेम वे द वे यू
1: ओहो
0: लाफ,
1: अच्छा।
0: मैं बोला मुझसे होता नहीं
1: हाँ।
0: है।
1: तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
0: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूं बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट विथ हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं
1: क्या
0: हमेशा
1: बात, चलिए सुनते हैं।
0: हम

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये
1: बिल्कुल
0: प्यार। और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब
0: हाँ
1: थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी वो। दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
0: जी
1: जो कि साउथ से, सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर
0: हाँ
1: किया।
0: हाँ
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
0: हाँ
1: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा
1: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
0: हाँ हाँ
1: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में,
0: जी जी
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
0: हाँ
1: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
0: जी
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ। उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
0: अच्छा
1: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई,
0: अच्छा
1: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो,
0: अच्छा
1: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
0: हाँ
1: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
0: हाँ
1: अरे राजकुमार संतोषी।
0: अच्छा
1: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
0: ओहो
1: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत, मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
0: हाँ
1: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे कहीं।
0: अच्छा
1: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
0: अच्छा
1: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
0: अच्छा
1: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ और राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
0: हाँ
1: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
0: हाँ
1: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था,
0: जी
1: तो उनको

0: बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
0: जी।
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है।
1: हाँ,
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
1: जी।
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: तो टेलीकास्ट होना ही है।
0: होना ही है
1: जी।
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है। और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी जी,
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी
1: जी।
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी,
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात।
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौशी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल,
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा।
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था, बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में मुझे।
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ।
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी, उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कमर भी आता है वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ।
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले, तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो
1: जी।
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल।
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता
1: था। दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ,
0: वो सफर है।
1: अच्छा।
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ।
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब।
1: बराबर।
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ।
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला।
1: है, क्या बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे,
1: तो
0: सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्रा ये करते हैं, सुमित्रा ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता
0: जी,
1: था क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उनका।
1: वागले मेरा, मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी,
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए
0: हाँ
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ।
0: जी
1: सभी हम लोग सभी से
0: जी
1: सीनियर
0: जी
1: है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहां से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं। फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वॉज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है।

0: और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं इंसान,
1: बिल्कुल,
0: अगर दिल से अच्छा नहीं
1: ये
0: है तो हो
1: बहुत
0: जाएंगे।
1: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
0: जी जी जी
1: और बहुत विनम्र होते हैं।
0: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं, कुछ
1: जी
0: नहीं।
1: जी जी
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
1: जी
0: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
1: जी
0: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये
1: हाँ
0: सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
1: जी
0: जाती है। लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
1: अच्छा
0: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी
0: वो ज्यादा मैटर करती है,
1: बिल्कुल
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझते अपन,
1: हाँ, एक घूंट लेने की जो
0: घूंट
1: एक
0: वो
1: प्रक्रिया
0: है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
1: प्रयास करना पड़ता
0: प्रयास करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
1: हाँ
0: लेवल पे पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली,
1: जी
0: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था। फिर
1: हाँ
0: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
1: हाँ
0: इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ,
1: जी
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा। तो
1: हाँ
0: आई यूज टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूं जितने भी लाइंस आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना
1: जी
0: पाटेकर
1: जी
0: साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है,
1: जी
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है।
1: जी
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक
1: जी
0: पारिक, और
1: जी
0: उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा।
1: जी
0: वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया,
1: जी
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं भी उसी सवाल पे आने वाला हूं
0: जी
1: कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं।
1: हाँ
0: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे
1: हाँ
0: कि ये तेरा रोज कहां से आएगा।
1: हाँ
0: जो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है।
1: हाँ
0: बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ,
1: हाँ
0: हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा
1: अच्छा
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है,
1: अच्छा
0: दिखता है बिल्कुल आपकी तरह। मैंने अच्छा,
1: अच्छा
0: मतलब किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है,
1: हाँ
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है।
1: हाँ
0: मैंने अच्छा,
1: अच्छा जी जी
0: मैंने बोला

0: सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा। उमदा वाला,
1: अच्छा
0: चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई
1: क्या
0: लाइक
1: बात
0: दैट, आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
1: हाँ
0: उनको बताया कि ये वही है। ब्रो ने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या
1: जी
0: करोगे
1: जी
0: आप?
1: जी ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते
0: मीन
1: हैं।
0: जैसे ट्रू ट्रू।
1: जी, तो ऐसा ही वाकया आपके साथ हुआ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या?
0: ऐसा ही हुआ। और
1: हाँ
0: मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता
1: हाँ
0: है। एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात है,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा,
1: हाँ
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
1: क्या
0: है।
1: बात
0: मैंने
1: है।
0: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए
1: हाँ
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, राम जी लंदन वाले। ये
1: अच्छा हाँ
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं
1: अच्छा
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता
1: हाँ
0: है। पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा
1: हाँ
0: रहा है, गाड़ी देंगे आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
1: हाँ
0: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
1: हाँ
0: मजा तो वही है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे, दैट
1: क्या बात है।
0: इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था है, अपना दिल तो आवारा।
1: हो आइए सुनते हैं।
0: जी।

अभिनेता विपुल देशपांडे से, जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
3: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दो

0: दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम युववाणी की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। रोज़ की तरह आज भी शाम 6:05 पर

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। शाम 7:15 पर सुनिए रोज़ की तरह आज भी संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र और तब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद की प्रस्तुति होगी शाम 7:50 पर। रात्रि 8:45 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजल की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से रात्रि 10:00 हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। रात्रि 10:00 हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने हम प्रस्तुत करेंगे और रात्रि 11:00 हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

मेरा बजरंग नाचे एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे अविनाश करण की आवाज़ में। कानू उस्ताद के लिखे इस भजन की धुन बनाई थी रवि चौपड़ा ने। और अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा एल्बम से भजन कीर्ति मान की आवाज़ में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: सियापति राम चंद्र की जय।
1: कीर्तिमान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री हनुमान चालीसा। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। अगला भजन हम आपको सुनवाएं, इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवाणी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुकना सीखिए। प्रेरणादायी व्यक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में भी जानेंगे, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी भी है। खेल के मैदान से भी कुछ बातें होंगी और आनंद लेंगे फिल्म संगीत के भी। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुकना सीखिए। दोस्तों, झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी, विनम्रता और परिपक्वता की पहचान है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुकना, ये जीवन को नई दिशा दे सकता है। जो व्यक्ति समय, परिस्थिति और रिश्तों के अनुसार झुकना जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ने की राह भी बना लेता है। प्रकृति हमें हर दिन यह सिखा देती है। आपने देखा होगा कि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, इसके विपरीत सूखी और बंजर डालियां अकड़ कर खड़ी रहती हैं। इसी प्रकार ज्ञान, अनुभव और संस्कार से संपन्न व्यक्ति जितना बड़ा होता है, उतना ही विनम्र भी होता हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें अपने अहंकार और जिद को छोड़ना पड़ता है। यदि हर बात पर हम स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते टूटेंगे, अवसर छूटेंगे और मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि हम थोड़ा झुक जाएं, सामने वाले की बात सुन लें और समझदारी से निर्णय लें तो अनेक समस्याएं बिना किसी विवाद के समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, महान लोगों का जीवन भी हमें यही संदेश देता है कि सफलता का आधार केवल प्रतिभा नहीं बल्कि विनम्रता भी है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, उनकी बात सुनता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है, वही लोगों के दिलों में स्थान भी बनाता है। कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज, हर जगह सहयोग और सामंजस्य की आवश्यकता होती है। यदि हर व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाने पर अड़ जाए तो विकास रुक जाएगा। लेकिन जहां संवाद, सम्मान और झुकने की भावना होती है, वहां विश्वास भी जन्म लेता है और सफलता भी। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि झुकना और हार मान लेना एक जैसी बातें नहीं हैं। झुकना बुद्धिमानी है, जबकि अन्याय के सामने चुप रहना कमजोरी हो सकती है। हमें सत्य, न्याय और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। कहा भी गया है दोस्तों कि जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। यह केवल एक कहावत नहीं दोस्तों, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। नदी भी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वह हमेशा नीचे की ओर बहती है। यदि वह ऊंचा बनने की जिद करती तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती, है ना? और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन धैर्य, संयम और विनम्रता को भूलते जा रहे हैं। याद रखिए, केवल ऊंची आवाज से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वही होता है जिसके व्यवहार में सरलता, शब्दों में मिठास और स्वभाव में विनम्रता हो। यदि हम अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर और अपने समाज में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाना चाहते हैं तो हमें पहले स्वयं झुकना सीखना होगा। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और समय पर किया गया विनम्र व्यवहार कई बिगड़े हुए रिश्तों

को फिर से जोड़ सकते हैं। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, हम अपने अहंकार को नहीं अपने संस्कारों को आगे रखेंगे, हम दूसरों का सम्मान करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर विनम्रता से झुकने में कभी संकोच नहीं करेंगे। और दोस्तों याद रखिए, अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय बना देती है। तो झुकना सीख लेता है, जो भी इंसान झुकना सीख लेता है वही जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता दोस्तों, आप सबने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवावाणी। और इस कार्यक्रम में आइए कुछ चर्चा करते हैं प्रेरणादायी व्यक्तित्व चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पर। श्रोता दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने अल्प साहित्यिक लेखन के बावजूद अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं महान साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जिनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। वे केवल एक उत्कृष्ट साहित्यकार ही नहीं बल्कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, पाली और फारसी जैसी अनेक भाषाओं के विद्वान भी थे। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और संस्कृत पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनका व्यक्तित्व यह संदेश देता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और निरंतर सीखते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना भी है। जब भी हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जाता है तो उनकी कालजयी कहानी उसने कहा था का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह कहानी प्रेम, कर्तव्य, त्याग और मानवीय संवेदनाओं का ऐसा अनुपम उदाहरण है जिसे आज भी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। इसमें भावनाओं की गहराई, भाषा की सादगी और चरित्रों की जीवंतता पाठकों के मन को छू जाती है। गुलेरी जी की जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके द्वारा लिखे गए पन्नों की संख्या से नहीं बल्कि उसके विचारों की गहराई से मापी जाती है। उन्होंने बहुत कम लिखा लेकिन जो लिखा वह अमर हो गया। यह हम सभी के लिए सीख है कि हमें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा,

गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को दिशा देना भी है। उनके लेखन में मानवीय संवेदनाएं, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए गुलेरी जी का जीवन विशेष रूप से प्रेरणादायक है। वे हमें सिखाते हैं कि निरंतर अध्ययन, जिज्ञासा, अनुशासन और ज्ञान के प्रति समर्पण ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। यदि हम सीखने की ललक बनाए रखें और अपने कार्य को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें तो सीमित संसाधनों में भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उनका व्यक्तित्व यह भी बताता है कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। प्रेम, करुणा, कर्तव्य और मानवता जैसे मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। तो आइए, उनकी जयंती पर हम यह संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में ज्ञान का सम्मान करेंगे, निरंतर सीखते रहेंगे, अपने कार्य में उत्कृष्टता लाएंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ महान साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। और अब एक और सुनते हैं फिल्म संगीत, जिसे हमने लिया है बाजीगर से।

और अब कार्यक्रम के अंत में खेल के मैदान से जानते हैं। श्रोता दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज इंग्लैंड के नॉटिंगहम स्थित ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे T20 में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई है, इसलिए आज का मैच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में।

इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

0: भरत सिंह भारती और उनके साथियों से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन।
1: प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीमावर्ती जिला सब के घुसपैठ मुक्त बनावे के सरकार के प्रतिबद्धता दोहरौले बने। श्री चौधरी आज अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में जुटल जन समुदाय के संबोधित करत रहले। उ कहले कि राज्य में घुसपैठ आतंकवाद आ अपराध खातिर कौनो जगह नहीं खे। श्री चौधरी कहले कि सहयोग शिविर आम लोगन के समस्या के तुरंते समाधान के एगो प्रभावी माध्यम बन के उभरल बा। उ बतौले कि यह शिविरन के माध्यम से अबही तक 453,000 लोग के आवेदन कैले बाड़े। एहमे मात्र 27,000 आवेदन लंबित बा। एह मौका पर मुख्यमंत्री सहयोग शिविर में लोगन के समस्या सुने आ एकरा जल्दीय समाधान के निर्देश देहले। प्रदेश में अब राज्य सरकार के मालिकाना हक वाला राजमार्ग बड़का पुल बाईपास आ सुरंग पर टोल टैक्स देवे के पड़ी। परिवहन विभाग पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के अधिसूचना जारी करके नया टोल नीति लागू करे के कहले बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़े कि नया टोल नीति के तहत खाली कमर्शियल गाड़ी सबके ही टोल टैक्स देवे के पड़ी। निजी गाड़ी के कोनो प्रकार

0: के टोल ना देवे के पड़ी। एने संवाददाता बतौले कि अलग अलग सड़कन खातिर अलग अलग श्रेणी से टोल टैक्स तय कैल गईल बा। भाजपा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर अभिषेक कुमार के आपन उम्मीदवार बनौले बा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ए संबंध में चिट्ठी जारी करके ई बात बतौले। अभिषेक कुमार पटना महानगर के बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकल बाड़ेन। जनसुराज प्रशांत किशोर के और आरजेडी रेखा गुप्ता के आपन उम्मीदवार बनौले बा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बांकीपुर सीट छोड़ला के वजह से ई सीट खाली भइल रहे। पटना में 10 जुलाई के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के एगो जरूरी बैठक आयोजित कल गई बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में होखे वाला यह बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सौंसे वरिष्ठ नेता शामिल हुई हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बतौले कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श कल जाय। एकरा अलावा गठबंधन से जुड़ल और दूसर राजनीतिक आ संगठनात्मक मुद्दन पर भी चर्चा हुई। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 11 आ 12 जुलाई के गया जी में विधायक लोगन के 2 दिन के प्रबोधन कार्यक्रम हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बतौले कि प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत और गणमान्य लोग उपस्थित रही हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म आ एयर टूरिज्म योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा के मामला सोझा सामने आयल बा। पर्यटन विभाग कहले बा कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा खातिर ऑनलाइन बुकिंग के लिंक अभी तक लाइव नहीं भइल। इस संबंध में 15 जुलाई से बिहार पर्यटन आ बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार कल जाय। विभाग लोग से थर्ड पार्टी वेबसाइट चाहे एजेंट के माध्यम से बुकिंग या पैसा ना देवे के अपील कैले बा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूर्वी चंपारण जिला के फेनहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नाम के एक आदमी के घर छापेमारी कैले बा। जांच एजेंसी ओकरा से करीब 5 घंटा तक लंबा पूछताछ कैलस। मिलल जानकारी के मुताबिक मोहम्मद कलामुद्दीन पर लैकन सन के झांसा दे के कम्बोडिया भेजे के आरोप बटे। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गई बा। प्रदेश भर में रुक रुक के बरखा बरसता। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगला 1 हफ्ता तक बरखा खातिर अनुकूल माहौल बनल बा। विभाग बिहान अररिया किशनगंज मधुबनी सुपौल आ कैमूर जिला में कुछ जगहन पर भारी बरखा बरसे के चेतावनी जारी कैले बा। राज्य के दूसरा हिस्सन में भी भारी बारिश के अनुमान बा। पूर्वी चंपारण जिला के हरपुर थाना इलाका से SSB और पुलिस के टीम मिल के यूक्रेन के एगो मेहरारू के गिरफ्तार कैले बा। वो मेहरारू बिना कोनो वैध कागजात के नेपाल में घुसे के कोशिश करत रहे। पटना मेडिकल कॉलेज में नर्स स्टाफ जूनियर डॉक्टरन के खिलाफ नारेबाजी करते काम के बहिष्कार कैले बाड़ी। नर्स लोग जूनियर डॉक्टरन के ऊपर मारपीट करे और बदसलूकी करे के आरोप लगौले बा। नर्स सब जूनियर डॉक्टर से माफी मांगे के कहलस। दरभंगा जिला के पतौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंचल नगर गांव में एगो निर्माणाधीन 4 दीवारी के पास बम विस्फोट हो गई। धमाका में 2 गो लोग घायल हो गई बा, जिनकर इलाज DMCH में चल रहल बा। पुलिस पूरा मामला के जांच कर रहल बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। समय मिलाइए, शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: बूंद बूंद में जीवन बसेला, बूंद बूंद में संसार। बरखा का हर एक कतरा प्रकृति का बा अनुपम उपहार। जे पानी का मान रखे उहे काल मुस्काई, आ जल का हर एक बूंद बचा के आवे वाला काल सजाए। श्रोता सभे नमस्कार, किसानवाड़ी कार्यक्रम के साथ हम है रनिया बहिन,
1: हम दिनू भाई।
0: तो सबसे पहले करिंजा स्वीकार हमने का नमस्कार।
1: रनिया बहिन
0: जी,
1: कतना बढ़िया बात शुरू कैनी। वर्षा तो जैसे शुरू भइल बा
0: जी जी,
1: वैसे किसान के चेहरा एकदम खिल गइल बा
0: एकदम ना।
1: जेने देखी तेने सिवान में अदिमियो लौके लगल।
0: हाँ हाँ,
1: हर चलता तो कहीं रोपनी भी शुरू हो गइल बा।
0: दिनु भाई, जोन प्रकृति का भाई प्यार न हुए
1: जी,
0: आई हमने की याद दिलावेला कि जीवन का सबसे बड़ दौलत
1: आई यही पर तो हमने के सालों भर के श्रृंगार बा।
0: हाँ हाँ, कुछ बात खाली पनिए बाटे
1: जी।
0: साँच कहल जाओ तो आदमी कहत रहम कि जल बा तो कल बाटे,
1: जल बा तो कल बा।
0: आ तनकी सा और एकरा आगे बढ़ल जाओ तो इहो कहल जा सकेला कि जल बा तो जीवन बा, जल बा तो खेती बा, जल बा तो खुशहाली बा,
1: जल बा तबे सब बा।
0: हाँ, आवे वाला पीढ़ी का भविष्य भी बाटे।
1: ये प्रकृति ऐसन दिले बा, उपहार दिले बा, हवा पानी ये ऐसन चीज है कि अगर ये दोनों न रहे तो फिर कोनो काम ना हो सके
0: ना, ना।
1: एक क्षण भी जिंदा ना रह सके। तो एकर उपयोग कैसे करे के बा, एकर एकरा के भी जानल रनिया बहिन जरूरी
0: बा, बहुत ही ना जरूरी बाटे।
1: काहे कि आज जितना तेजी से दोहन कर रहल बनी या हमनी के जल के, वायु के, पेड़ पौधा के, तो वो दिन दूर नहीं के जब जम जौन हमनी के कह रहल बनी जा आज ओकरा खातिर तरसे लागल जी।
0: देखते ना बनी दिनू भाई कि पहले आदमी कुआं में से पानी निकालत रहे।
1: हाँ हाँ।
0: अब कुआं से हो गई कल, कल से हो गई अब बोतल में, देखी आ गई नहीं
1: जा।
0: अब बोतल से अब कहाँ हमने के चुरुआ में पानी पियल जाई।
1: सोची
0: अब सोची कि हमने के आवे वाला जोन पीढ़ी बाटे दिनू भाई, वो कैसे जीवित रही
1: बारे में जरूर सोचे के बा,
0: जरूर सोचे के बाटे। ये हमने के खाली अपन ही जीवन तक नहीं सोचे के,
1: आगे आवे वाला कल के बारे में भी सोचे के बा।
0: आ जब बेटा बेटी के जन्म देता नहीं जा, हमने के पेड़ काट काट के घर बनावता नहीं जा अपने बेटे बेटी खातिर, ना कि अपने खातिर थोड़े
1: जी।
0: हाँ, अपने बेटे बेटी खातिर बनावता नहीं जा।
1: इहो देखल जाओ कि एगो पेड़ भी एगो बेटा से कम नहीं,
0: कम नहीं है। सौ कहल जाला कि एक पेड़ सौ पुत्र के समान होला
1: जी। आज तो सरकार भी कह रहा बा कि जितना अधिक से अधिक पेड़ लगाई ताकि हमनी के पर्यावरण जोन बा तौन सुरक्षित रहो
0: जी जी जी जी।
1: तो देखी आज के कार्यक्रम में का बात तनी बता दी, जान ली जा किसान भाई लोग कि आज
0: जी
1: के कार्यक्रम में रोज के तरह पहले खबर हुई, एकरा बाद आज की बातें के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनल जाई। विषय बा धान की रोपनी। भेंट वार्ताकार होखब डॉक्टर सदानंद राय आ भेंट करता बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी
0: जी।
1: एकरा बाद नई उम्र के नई फसल के अंतर्गत हमनी के बरसाती सब्जियों की खेती के बारे में जानल जाई। आज के नसीहत रही एक पेड़ माँ के नाम, तीन फेज, फेज तीन एकरा मिशन में शामिल हुई आ एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाई। एकरा अलावे कुछ सामयिक सलाह आ मौसम पूर्वानुमान भी चलत चलत जान लिहल जाई
0: जी जी जी।
1: ई रहल कार्यक्रम के रूपरेखा। अब रउआ भिरी का खबर बा तनी बता दही।
0: देखी खबर ई बा दिनू भाई
1: जी
0: कि बिहार सरकार पारंपरिक खेती के साथे साथे किसान की व्यवसायिक आ मसाला फसल की ओर भी आकर्षित करे खातिर एगो बेहतर योजना लेके आई बाटे
1: जी जी, बता दी।
0: मानसून के यह सीजन में मेथी के खेती करे वाला किसान के राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 20,000 तक रुपया तक का सहायता अनुदान देहल जा देवे जा रहल बटे।
1: कितना बढ़िया बात बा।
0: एकर मुख्य उद्देश्य यह बा कि किसान के लागत के कम कैल, मसाला फसल के उत्पादन बढ़ावल आ कृषि विविधीकरण के जरिए किसान के आर्थिक स्थिति के मजबूत कैल। यह मिशन के तहत मेथी के अलावा धनिया, कलौंजी जरा कि हमने के मंगरैला कहल जाए, अजवाइन

0: जैसन कई गो नगदी जोन मसाला बना तो के बढ़ावा दिहल जा रहा बाटे।
1: जी
0: सरकार मेथी के खेती खातिर के प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया का इकाई लागत निर्धारित कैले बाटे। यह निर्धारित लागत पर 40% का भारी अनुदान दिहल जा रहा बाटे।
1: अच्छा, कितना बढ़िया बात भाई।
0: जवन की अधिकतम 20,000 प्रति हेक्टेयर बनत बा।
1: अच्छा,
0: इ अनुदान राशि पूरा तरह से पारदर्शी व्यवस्था के तहत DBD यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा चयनित किसान के बैंक के खाता में चल जाए।
1: कितना बढ़िया समाचार रहल। आ देखिए एगो खबर ई बा कि जुलाई में करी पपीता के खेती होई निमन फायदा। श्रोता सभे, पपीता एगो ऐसन फल ह जौना के मांग सालों भर बा। खेती कैल भी आसान बा। पपीता उष्ण कटिबंधीय फसल ह, बाकी एकर खेती समशीतोष्ण आबोहवा में भी कैल जा सकेला। ज़्यादा ठंडा एकरा के फायदा ना करे, बाकी फल में मिठास आ फल पाके खातिर गरम मौसम आवश्यक होला। फसल के उत्पादन खातिर दोमट

0: पांग सालो भर बा। खेती कैल बियासान बा। पपीता उष्णकटिबंधीय फसल ह, बाकी एकर खेती समशीतोष्ण आबोहवा में भी कैल जा सकेला। ज्यादा ठंडा एकरा के फायदा ना करे, बाकी फल में मिठास आ फल पाके खातिर गरम मौसम आवश्यक होला। फसल के उत्पादन खातिर दोमट माटी जरूरी होला, लेकिन खेत में पानी ना रहे के चाही, पानी के निकास बढ़िया रहे के चाही, वो खेत में पपीता के खेती निमन हुई। पूसा डायलिसिस, पूसा मेजेस्टी, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, कोयम्बर वन, कोयम्बर तीन आ हनी ड्यू जौना के मधुबिंद भी कहल जाला, एकर खेती कैला से किसान के बढ़िया लाभ हुई।
1: जी।
0: एकरा अलावे पपीता स्वास्थ्य वर्धक आ विटामिन ए से भरपूर होला। पपीता जल्दी बढ़े वाला पेड़ है। साधारण जमीन, थोड़ा गर्मी आ अच्छा धूप जगर होके तो पपीता के बढ़वार आ विकास निमन होला। एक बार में एक पेड़ में 80 से 100 फल लागेला। रेड लेडी 786 सबसे बढ़िया एगो फसल आयल बा। एकर विकास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा कैल गेल बा। एकर संकर किस्म के पौधा है आ एकरा में पारंपरिक स्कॉट वायरस ना लगे, जौना के चलते ई फल और बढ़िया होला। ई किस्म 9 महीना में तैयार होला। पपीता लगावे के असली समय जुलाई से सितंबर आ फिर फरवरी मार्च होला।
1: जी जी, तो बहुत बढ़िया हमनी के खबर मिल गल।
0: अब हमनी के आज की बातें के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनवा दिया जाओ किसान लोग के।
1: जी जी जी, विषय बाटे धान की रोपनी आ भेंट वार्ता कर बानी डॉक्टर सदानंद राय जी आ भेंट कैले बानी यहाँ से डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी।
2: किसान भाइयों, धान की रोपनी हम लोग कैसे करें ये जानना जरूरी है वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए। और ये जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सदानंद राय को। वनवासी कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा कैमूर में कृषि वैज्ञानिक हैं। तो कैसे धान की रोपनी की जाए ये बताएंगे आपको। सबसे पहले तो राय जी ये बताइए कि खेत की तैयारी कैसे की जाए।
3: जी, देखा जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान भाई धान की खेती शुरू कर चुके हैं, नर्सरी डाल चुके हैं और गर्मी में उन्होंने अपने खेत की तैयारी कर रखा है। गर्मी में खेत की तैयारी कर रखा है, लेकिन अभी जब उनको रोपनी करना है तो रोपनी के लिए खास कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
2: जी,
3: कि जैसे अभी जिस खेत में रोपनी करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि रोपाई का समय चल रहा है,
2: जी,
3: तो उस खेत में पानी लगा करके बढ़िया से कदवा कर देना चाहिए ताकि उसके जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं।
2: जी,
3: और जो कदवा करेंगे तो कदवा करते समय, चूंकि ये खेत की तैयारी चल रही है, कदवा करके उसको फिर पाटा चला करके समतल करेंगे, तो कदवा करते समय ही उसी समय जो अनुशंसित उर्वरक है
2: जी
3: उसको मिलाना चाहिए।
2: जी,
3: जैसे आपको प्रति हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन की जरूरत है
2: जी
3: और 40 किलोग्राम सुपर फास्फेट की जरूरत है और 20 किलोग्राम पोटास की जरूरत है
2: जी।
3: तो इसके लिए किसान भाई या तो
2: यूरिया तत्व रूप में
3: जी
2: जी
3: तो या तो यूरिया देते हैं, तो अगर यूरिया देते हैं तो 220 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता होगी
2: जी।
3: अगर यूरिया नहीं है, उसके जगह पर अमोनियम सल्फेट देते हैं, तो अमोनियम सल्फेट में उन्हें 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अमोनियम सल्फेट अनुशंसित है
2: जी।
3: इसके बाद
2: ये लंबी अवधि के प्रभेदों के लिए है कि जो छोटी अवधि के प्रभेद हैं उनके लिए?
3: नहीं, ये मध्यम
2: जी, मध्यम
3: जी, मध्यम से लेके लंबी अवधि तक के लिए अच्छी पैदावार के लिए ये अनुशंसित जो है फर्टिलाइजर, जो इसके खाद है, उर्वरक है, वो देना चाहिए
2: जी।
3: सिंगल सुपर फास्फेट, इसकी मात्रा 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और म्यूरेट ऑफ पोटास 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और साथ में किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। और जब ये अनुशंसित जो उर्वरक हैं, इनमें से आप नाइट्रोजन की मात्रा 1/4 छोड़ दें
2: जी।
3: नाइट्रोजन या आप या यूरिया दें या अमोनियम सल्फेट दें
2: जी,
3: दोनों में से इसको 1/4 छोड़ करके सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा कदवा करते समय ही खेत में मिला दें
2: जी।
3: और मिलाने के बाद बढ़िया से उसको समतल कर दें ताकि उसमें

0: समतल करके 5-6 घंटे छोड़ दें, ताकि पानी में जो गंदगी, जो मिट्टी मिला रहता है, उस समय रोपनी करते हैं तो उसमें पौधे के ऊपर आप देखते होंगे उसके पत्तों पर कुछ मिट्टी आ जाती है
1: जी जी।
0: तो जिससे वो पौधा जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो नुकसान करेगा। इसलिए 5-6 घंटे खाद को मिलाने के बाद पानी 5-6 इंच लगा रहे उसमें और 5-6 घंटे छोड़ने के बाद ही रोपनी करें। रेस्ट यूरिया का आप जो 1/4 चौथाई भाग उसको आप रखें 25-30 दिन के बाद दें, और फिर 1/4 जो है लास्ट में जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आता है, फूल आने का स्टेज आता है, तो उस समय दें।
2: अच्छा, हाँ। अब ये बताइए कि पौधों को कैसे उखाड़ना चाहिए?
0: बीज स्थली में कार्बनिक मैटर इसलिए देते हैं, कार्बनिक खाद, कि आराम से वो बीज जो है उसको उखाड़ने पर उसका जड़ न टूटे
1: जी।
0: तो मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जड़ न टूटे, इसलिए हल्का सा पानी लगा दें उसको उखाड़ने से पहले, और इसके बाद उसको उखाड़ें ताकि उसकी जड़ न टूटे, और उसकी पोटली बना बना करके जैसे रोपाई करते हैं खेत में फेंकते हैं, वो अपना आप रोपाई करें।
2: डॉक्टर राज जी, जैसा कि आपने बताया कि 4-5 इंच पानी होना चाहिए खेतों में रोपनी करते समय, लेकिन कई कृषि वैज्ञानिक बतलाते हैं कि नहीं, उतने पानी की आवश्यकता नहीं, 1 इंच अधिक से अधिक पानी होना चाहिए अगर आपका खेत समतल है। क्या स्थिति होनी चाहिए पानी?
0: नहीं, 4-5 इंच पानी रहना चाहिए रोपनी के बाद, ये मेंटेन करना चाहिए
2: जी,
0: कि 1 सप्ताह तक उसमें 4-5 इंच पानी रहे। उससे फायदा ये होता है कि जो खर पतवार हैं, जो उसमें घास है
2: जी,
0: उसकी मात्रा कम हो जाएगी।
2: अच्छा,
0: अगर तुरंत आप निकाल देते हैं तो उसके धान के पैदावार पर और उसके उगने पर या उसके जर्मिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पानी अगर 4-5 इंच लगा के रखते हैं तो उसमें घास की मात्रा कम होगी।
2: देखा जाता है कि पानी अगर अधिक है तो पौधे उखड़ा।
0: देखिए, उसमें 2 बात है, अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो जो हमारा पौध है वो 2.5 से 3 इंच तक जाना चाहिए, उसके नीचे जाने पर नुकसान है और ऊपर अगर करते हैं तो वो तैरने लगता है
2: जी।
0: तो इसलिए मैंने आपको कहा कि पानी लगाने के बाद, कदवा करने के बाद थोड़ा स्थिर हो जाने दें ताकि उसकी जो मिट्टी है वो बैठ जाए, और तब अगर आप रोपनी करते हैं 2.5 इंच 3 इंच नीचे अगर डालते हैं तो वो पौधा नहीं उखड़ेगा।
2: रोपनी के समय कितना पौधा लगाना चाहिए खेतों में?
0: देखिए, रोपाई के समय आमतौर पर जो आप अपने यहाँ देख रहे हैं कि 20-25 दिन का बिछड़ा लोग लगाते हैं और एक में 5-5, 6-6 पौधे को एक साथ लगाते हैं। आप इस कैमूर जिले में देखते होंगे कि आपके जिले में श्री तकनीक एक है धान की रोपाई के लिए, आजकल बेस्ट तकनीक है श्री तकनीक। तो श्री तकनीक में क्या है कि 8 से 10 किलो, भभुआ जिले में आप देखते होंगे कि 8 से 10 किलो के धान की नर्सरी में वो 1 हेक्टेयर लगाते हैं
2: जी।
0: लेकिन उसमें 1 से 2 पौधे ही एक जगह लगाते हैं। तो श्री तकनीक ये जो जितने भी आपको जहाँ पानी का अभाव है
2: जी,
0: जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी नहीं है, ऐसे जगह पर श्री तकनीक अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आपका 75 से 80% बीज में जो पैसा है
2: जी,
0: वो बचता है
2: जी।
0: चूंकि इसमें आपको 5 किलो श्री तकनीक से अगर आप धान लगाते हैं तो 5 किलो बीज में 1 हेक्टेयर की रोपाई आप कर सकते हैं
2: जी।
0: दूसरा एक चीज ये है कि जहाँ जल की कमी है, जहाँ रेनफेड कंडीशन है, जहाँ पानी कम आ रहा है, वहां पर आप अगर इस विधि से करते हैं, चूंकि इसमें एक बार पानी आए और पानी निकल जाए, बहुत सारे किसान भाइयों के पास आप देखते होंगे कि मिडलैंड है जो बीच की जमीन है, न लो लैंड है न अप लैंड है, तो ऐसी जमीन में आप श्री तकनीक से अगर धान लगाते हैं तो उतने ही 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से नर्सरी तैयार करें और उसको लगाएं तो आप 2.5 गुना तक उपज बढ़ा सकते हैं
2: जी।
0: तो श्री तकनीक से अगर खेती करें, श्री तकनीक से अगर रोपनी करें तो वो और अच्छा है। श्री तकनीक में ध्यान यही देना है कि आपको 10 दिन का बिचड़ा खेत में रोपाई करना है
2: जी।
0: 10 दिन का बिचड़ा हो गया, इसके बाद उसको आप 1-1, 2-2 पौधा 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर, लाइन और पौधे से पौधे की दूरी दोनों को 25 सेंटीमीटर पर अगर मेंटेन करें तो 5 किलो की जो नर्सरी है उसमें 1 हेक्टेयर आप श्री तकनीक से लगा सकते हैं
2: जी।
0: ध्यान यही देना होगा इसमें कि ये ध्यान देना है कि पानी बरसे, खेत में पानी आए और वो पानी निकल जाए
2: जी।
0: इस तरह से अगर आप पानी दें और पानी निकाल दें तो आप देखेंगे इसमें कल्लों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है
2: जी।
0: और उपज में ये देखा गया, हम लोगों ने इसका टेस्ट भी किया है
2: जी।
0: तो इसके जो परीक्षण है वो ये साबित करते हैं कि 1.5 गुने तक उपज हम लोगों ने अधौरा में भी लिया है।
2: अभी आप बतला रहे थे कि भाई पानी भरा रहना चाहिए ताकि खरपतवार न उगे, इसमें कैसे खरपतवार नियंत्रण होगा?
0: देखिए, श्री तकनीक जो है ये लेबर इंटेंसिव है, ऐसे लोगों के लिए है जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, जिनके पास उतने संसाधन नहीं है। श्री तकनीक को अगर आप कहेंगे कि बहुत बड़े फार्मर जो है, जो 10-20 एकड़ में खेती करते हैं, जिनके पास सारे संसाधन है, तो वो इनके लिए उतना बेस्ट नहीं है। ये इन्होंने श्री तकनीक में से एक चीज ले लिया, एक कंपोनेंट के बीज कम देते हैं, 10 किलो बीज में ये 1 हेक्टेयर में लगा लेते हैं। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास लेबर हैं, जिनके पास श्रमिक हैं
2: जी।
0: अगर आप उसमें पानी देते हैं और पानी निकल जाता है, मान लीजिए

0: उसके पास पानी का साधन नहीं है, रेनफेड कंडीशन की बात, मैं रोहतास और कैमूर के कुछ हिस्से की बात करूं, तो उसमें बारिश हुई और पानी बरसा और पानी निकल गया, और उनके पास लेबर है। इसमें केवल दिक्कत यह है कि थोड़ी घास आएगी
1: जी,
0: तो घास निकालने के लिए लेबर की जरूरत है, तो उसमें लेबर उनके घर में हैं
1: जी,
0: जो भी छोटे मझोले किसान हैं उनके पास छोटे छोटे एकरेज हैं, किसी के पास एक एकड़ जमीन है, किसी के पास दो एकड़ जमीन है, उससे ज्यादा जमीन भी नहीं है। तो अगर श्री तकनीक से अगर वो खेती करें तो एक एकड़ में भी वो एक हेक्टेयर के बराबर पैदावार ले सकते हैं
1: जी,
0: क्योंकि उनके पास श्रम संसाधन है
1: जी। तो इस तरह से श्री तकनीक से खेती कर सकते हैं। और रही बात कि हम लोगों को जो सोहनी जिसको कहते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो सामान्य खेती जो हो रही है, कितने दिन पर सोहनी होनी चाहिए?
0: देखिए सोहनी तो आपको जब पौधा आप रुपाई कर देते हैं तो घास की आने के ऊपर है, अगर घास नहीं है तो सोहनी करने की जरूरत नहीं है, अगर घास आती है तो 20-25 दिन में आपको घास आ जाती है, रोपाई के बाद नजर आने लगती है, उसको आप सोहनी कर दें, उसको आप निकाल दें।
1: अच्छा, एक हमारे तरफ किसान कहते हैं कि सोहनी में जरूरी नहीं है कि हम लोग खरपतवार को ही निकालें, बल्कि पौधों के जड़ों को अगर धांग देते हैं, मतलब उसके बगल से मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, पैर रखेंगे तो मिट्टी ढीला होगी
0: जी,
1: तो उससे जो है पौधों का बढ़वार होता है, क्या ये सही है क्या?
0: देखिए एरेशन तो होता है
1: जी,
0: बाहर की हवा लगती है, हवा मिलती है
1: जी,
0: उसका असर तो आता है। श्री तकनीक में आप यही चीज पाएंगे, जो तकनीक अभी आप जो बताएं कि उसको धांगने से भी उसमें पौधे स्वस्थ हो जाते हैं, तो श्री तकनीक में यही चीज है।
1: तो डॉक्टर सदानंद राय जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: देखिए तो कितना बढ़िया भेंटवार्ता लागल, धान के रोपनी कैसे कल जावा, कितना तेजी में हुई कि हमने के बढ़िया लाभ मिली
3: जी जी जी,
2: तो बड़ा बढ़िया लोग बात बताओ, लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ये दोनों लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप संदेश सुन लेवे के
3: सुन लेवे का।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती

0: ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
3: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
4: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
5: रनिया बहन
6: जी,
5: अभी संदेश सुननी जाए।
6: अपना खेती बाड़ी की ओर चलल जाओ, खेत खलिहान में
5: देखी ए घड़ी समय चल रहा बा, बरसाती सब्जी लगा।
6: हाँ हाँ हाँ, जब तक से बरसात में कुछ तौर तरकारी ना रही ना, तब तक से भोजन जो बा स्वादिष्ट नहीं है।
5: ऐसा महीने आवेला साढ़ सावन के महीने की, जैसे बुझाला की सब सब्जी तो गर्मी वाला जर जला, बरसाती सब्जी तैयार ना भई रहेला, यही समय लगावल जला। लौका, नेनुआ, करैला, झिंडी, झिंगनी, बोधी, भिंडी, जेकरा भी खेती
6: खीरा, ककड़ी, परवल, सेम, मरचा, जवन भी बात सब आदमी लगाइए देवे ना।
5: लगावे के बहुत बढ़िया समय चल रहल बा। ए घड़ी जौन सब्जी लागेला ओकर विकास, बढ़वार आ उत्पादन सब बढ़िया रहेला।
6: आ बरसात का सब्जी खातिर के खेत का अच्छा तरह से पहले बढ़िया से जुताई उताई कर दही, ओकर खेत में गोबर का सड़ल जो गोबर का खाद होखेला, जैविक खाद जेकरा के कहल जाला, डाल दही, माटी के उर्वरता बढ़ जाए। आ बीज हमेशा अच्छा बढ़िया गुणवत्ता वाला डाल दही, रोग मुक्त हो तो और बढ़िया बाटे, बढ़िया हमनी के फसल उगी। आ समय रहते बुआई कर लही, आ मजबूत पौधा अगर होखे तो पैदावार भी अधिक बढ़िया होखी।
5: रनिया बहिन, एक पेड़ माँ के नाम फेज तीन के शुरुआत हो गई बा।
6: जी जी जी,
5: एकरा में हमनी के भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिहल जाओ,
6: तब का
5: अपना अगर जगह होखे, तनिको सा जगह होखे तो ओकरा के खाली मत छोड़ी, ओकरा में एगो पौधा जरूर लगा,
6: जरूर लगा। देखी दिनो भाई, जिस तरह से मतारी अपने जन्म के बच्चा के जन्म देवे ली,
5: जी जी,
6: ओकरा के सीखे ली, सिखावे ली, सींचे ली, ओकरा के वही तरीके से हमनी के पेड़ पौधा के भी लगावे के चाहिए, ओकर सम्मान करे के चाहिए, ओकरा के देखभाल बहुत जरूरी बा।
5: देखभाल ना हुई तो जौना उद्देश्य से लगोले बानी वो उद्देश्य के पूर्ति ना हुई।
6: काहे कि पेड़े देखी हमनी के सब कुछ देवेला, सब कुछ, लकड़ी से लेके दवाई से लेकर के मने सारा चीज, फल फलहरी सारा चीज देवेला।
5: सबसे तो जरूरी हवा देवेला, ऑक्सीजन के रूप में लेले जाए, जौना के प्राण वायु कहल जाला। हमनी के जितना भी गंदा जहरीला गैस छोड़ी ले जा, वो सारा समझ लही कि पौधा सुखेला, हमनी के जीवन आगे बढ़ावे के मौका देवेला।
6: तो आई जाए एगो संकल्प लेबे के कि एक माई के नाम पर पेड़ लगावल जाओ, एक परिवार के नाम पर हरियाली बिछावल जाओ, एक गांव के नाम पर खुशहाली आ जाए, आ एक देश के नाम पर के स्वच्छ, सुरक्षित आ हरा भरा भविष्य रहे। इहे सच्चा सेवा बाटे श्रोता सभे, आ इहे आवे वाला पीढ़ी के प्रति हमनी के सबसे बड़ जिम्मेदारी भी बाटे।
5: जितने पेड़ बढ़िया रही उतने हमनी के भविष्य बढ़िया रही।
6: जी जी,
5: आप कुछ सलाह बता दही।
6: देखिए एक नज़र हमनी के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अवधि 4 से लेकर के 8 जुलाई के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के या हल्का मध्यम बरखा होके के अनुमान बाटे। जिला के एक दो स्थान पर भारी बरखा होके के भी संभावना बाटे। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे।
5: अच्छा।

0: सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 80-85%, दोपहरिया में 25-30% रहे के संभावना रहे। आ पूर्वानुमान की अवधि में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण और पूर्वी हवा चले के भी अनुमान बाटे।
1: तो मौसम पूर्वानुमान बता देने रवा, अब कुछ सलाह होके तो किसान लोग के बताएं।
0: हाँ देखिए, आगामी दिन के देख करके, वर्षा के संभावना के देख करके खड़ा फसल में सिंचाई एकदम स्थगित कर दी, आ खाद आ कीटनाशक छिड़काव जोन बाटे आसमान साफ रहले पर ही करें।
1: जे पशुपालन कैले होके सबसे जरूरी ओकरा के होला, काहे कि असली अगर देखल जाए तो हमनी के आर्थिक सहायता करे वाला पशु ही बणन, जेकर जौना से दूध उत्पादन केकरा के जरूरत नहीं है आज समय में।
0: जी जी जी,
1: तो ओकर उत्पादन कैसे निमन हुई तनी बताई।
0: देखिए, गाय खातिर के रुआ जब दूध के बात कह दहनी, तो सबसे पहले गाय हमनी के माता कहाली, वो गाय पर हमनी के देखी गलघोटू और लंगड़ी रोग से बचावे खातिर इस समय उनका के टीका लगवावल बहुत जरूरी बाटे।
1: अच्छा अच्छा।
0: आ तब जोन सब दुधारू पशुअन में टीकाकरण जरूर से लगवा दी, आ गेहूं का भूसा खियावे से पहले ओकरा में करीब 2 घंटा ओकरा के पानी में फुला दही, आ 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम नीमक चारा दाना मिला करके ओकरा के रख दही, तब जा करके ओकरा के दे दही खाए के।
1: देखिए कितना बढ़िया बात बटुए। आ ये घड़ी सबसे जरूरी बटुए खेत जोता रहल बा, माटी के तैयारी।
0: जी,
1: माटी के तैयारी, खेत के तैयारी कैसे होखो एकरा बारे में किसान लोग के जानल सबसे जरूरी बा, काहे कि फसल तुरंत लगावे के बाद।
0: जी जी जी, तो देखिए एकरा खातिर कि 49 जमीन में अरहर के बुआई खेत खातिर के तैयार आसमान साफ रहला पर ही करी। अब बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 आ राजेंद्र अरहर 2 किस्म का बुआई 60x20 सेंटीमीटर के दूरी पर करी। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर आ 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करी। अरहर खातिर के अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाटे।
1: देखिए अब घड़ी कह रहल बा कि कार्यक्रम के समय उड़ा रहल बा।
0: जी,
1: तो
0: कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार।
1: जी, तो अब हमने का श्रोता सुख सभी से कहे के कि अब दीनू भाई की आज्ञा दही।
0: जी जी, आ साथे साथे रनिया बहन के भी आज्ञा दही जा।
1: चले चले के बारी सब श्रोता भाई बहन के
0: नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

प्रीतिया तोहार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण और शोभा बनर्जी की आवाज़ें थी। सुधाकर शर्मा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजन गुरुजी ने। और अब आइए एक बार फिर से राजन गुरुजी का लिखा एक गीत हम आपको सुनवाएं, इस बार अमित कुमार और शोभा बनर्जी की आवाज़ में। प्रीतिया तोहार फिल्म का नाम है और गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने।

कल्पना की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्रीतिया तोहार फिल्म का ये गीत। और अब आइए हम आपको सुनवाएं मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में कब आई हैं दुल्हा हमार फिल्म का एक गीत। वीरेंद्र पांडे हैं गीतकार और संगीतकार हैं सुरेंद्र कोहली।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त

0: सुन सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई
1: तो रोकले के बा
0: रोकले तो कोई नहीं खे बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी
1: हमरा से
0: तुहरा से तो बतावो
1: आकाशवाणी बाना हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा
1: फायदा बा जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई
1: बहुत आसान बा हम बतावत बानी नंबर लिखी 8700014242
0: ओ 8700014242
1: हाँ
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर
2: अब आइए सांझ गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं आवत हुई है सांवरिया फिल्म का एक गीत चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ है उमाकांत तिवारी हैं गीतकार और संगीतकार हैं दिलीप दत्ता

निरहुआ मेल फिल्म के इस गाने के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं, गुड इवनिंग रोहतास में हम चर्चा करते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर और कुछ फिल्म संगीत भी सुने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से। आज दिनांक 7/7/2026 को रोहतास जिले के 65 पंचायतों में आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं लाभुकों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन दिए, जिनका मौके पर ही निष्पादन करते हुए कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। नोखा प्रखंड के धर्मपुरा एवं कदवा पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग

शिविर की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। वहीं रोहतास प्रखंड के रसूलपुर एवं रोहतासगढ़ पंचायत भवन में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ। जिले की अन्य पंचायतों में भी विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में शिविर का संचालन किया गया। इसके साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में भी 32 वार्डों में वार्डवार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तथा शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को तत्काल राहत प्रदान की गई। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। DPRO आशीष रंजन के अनुसार जिले में आयोजित सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक कुल 8,758 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,592 आवेदनों का निष्पादन

समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। डीपीआरओ आशीष रंजन के अनुसार जिले में आयोजित सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक कुल 8,758 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,592 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि शेष आवेदनों पर संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जा रही है।

नौहट्टा की बात करें तो नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी व सूखे के बीच बारिश का इंतजार कर रहे अन्नदाताओं को इससे बड़ी राहत मिली है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के स्थानीय डीआरडीए सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी विजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वयक बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी से उनके विभाग में लंबित कार्य के निष्पादन के साथ विभागों के बीच आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, और सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे साजन फिल्म का ये गीत। और अब इसी के साथ सांझ गीत कार्यक्रम, माफ़ कीजिएगा, गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

0: बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू। मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव के रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री चौधरी आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ, आतंकवाद और अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।
1: दो चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी साथ। क्योंकि अपराध को, अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में अगले वित्तीय वर्ष में एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो जाएगा, साथ ही जल्द ही अररिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी सौगात मिलेगी।
1: हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, इस पूरे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ से पूरे जमीन की व्यवस्था करके दे दिया है, और हम लोगों ने भी तय कर दिया है अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। किसी दिन आएंगे और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे साथियों।
0: श्री चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अब तक

0: 453,000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें मात्र 27,000 आवेदन ही लंबित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और इसके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स देना होगा। सरकार ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर नई टोल नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा, निजी वाहनों को किसी प्रकार का टोल नहीं देना होगा।
1: कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है, बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि अलग अलग सड़कों के लिए वाहनों की श्रेणी के हिसाब से टोल टैक्स का निर्धारण किया गया है।
2: नई व्यवस्था के तहत दो लेन से अधिक और चार लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। चार लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% और 4.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर 50% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले बाईपास और सुरंगों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं रास्तों पर लागू होगा जहां वैकल्पिक मार्ग की सुविधा नहीं है। टोल की वसूली फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, दो पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों, तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों को टोल टैक्स से नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 3 गुना तक जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। अभिषेक कुमार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
3: मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। आज भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व पर भरोसा किया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी बांकीपुर के कार्यकर्ता, बांकीपुर की जनता का।
0: गौरतलब है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को जबकि जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है। जन शक्ति जनता दल ने वीणा मानवी और शोषित समाज दल ने सिकंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पटना में 10 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा।
4: पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे, और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही है उनसे भी फीडबैक लेना, हर एक जिला का जो सरकार का काम काज कैसे चल रहा है। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाई।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी @90 90 साल क्या

आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने सुपौल से दरभंगा तक पेड़ियामंच और मधेपुर होते हुए नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संबंध में पत्र जारी कर जल्द से जल्द DPR तैयार करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया। देश में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि E20 ईंधन पूरी तरह परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों और वाहन निर्माताओं के परीक्षणों में E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में इथेनॉल की कमी ऊर्जा क्षमता के कारण मामूली कमी संभव है, लेकिन वाहन के प्रदर्शन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है।

अब आइए बसंत बहार फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाएं। आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, पसंद आप सबों की है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाहकर, निर्मल नवाहकर और विशाल नवाहकर, गांव टोरोवाल जिला नवाशहर से आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी और डॉक्टर प्रशांत थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी।

इस गीत को सुनना चाहते हैं, सदाबहार सुरीला गीत, फरमाइश करते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से, वैष्णव कॉलोनी सनावत से, कौन है आपने अपना नाम नहीं लिखा, पता अवश्य आप लिख भेजे हैं, जिसे हमने पढ़ दिया।

और अब आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाहणकर राहि, श्रीमती सरिता ग्वाहणकर, प्रणीता सिद्धांत ग्वाहणकर, अर्जुन ग्वाहणकर टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश ग्वाहणकर, सुमित ग्वाहणकर, कुमारी ध्वनि ग्वाहणकर परी और प्रिंस एकांश ग्वाहणकर।

जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, पिशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाहणकर, सुमित ग्वाहणकर, कुमारी ध्वनि ग्वाहणकर, परी प्रिंस, एकांश और इनके परिवार के सभी सदस्य।

سوري. सुमन कल्याण, बरखा रानी, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, माला मिश्रा और साक्षी मिश्रा, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं बैराग फिल्म का एक गीत। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, आग्रह आपसे कि मेल सिर्फ एक बार करें एक दिन में, अपने नाम का और अपने पता का। कई बार होता ऐसा है कि लोग दो बार तीन बार मेल कर देते हैं, दो बार तीन बार अलग अलग फिल्मों के गाने सुन पसंद का अपना उसमें लिखते हैं और बार बार अन्य श्रोताओं की जगह पर आपका नाम पढ़ दिया जाता है, समय आप में ज़्यादा जाता है। इसलिए कृपया सहयोग करें, मेल सिर्फ एक बार करें एक दिन में। और जिन श्रोताओं के मेल आज शामिल हो गए, कृपया वो कम से कम दो दिन मेल ना करें। बारा आइए सुनते हैं बैराग फिल्म का ये गीत।

और अब बारी है हमारे इन श्रोता दोस्तों की। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी।

इस गीत को सुनना चाहते हैं मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से आप हैं जुबेर अली खान और सबिहा अंजुम खान।

0: पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह।
1: सीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इकरिस्ता रेडियो श्रोता संघ अंबाई सिल्लोड़ा छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसी के साथ ई मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान, और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार

0: व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
0: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का

0: शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
1: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात

0: ज्ञात बाधित रहा।
1: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। श्रोता दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं भरत सिंह भारती और उनके साथियों की आवाज़ों से। इन्हीं कलाकारों से आइए सुनते हैं एक सबसे पहले बरसाती गीत।

श्रीमती सुधा सिन्हा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी लोकगीत। श्रोताओं, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। अब आइए सुनते हैं विंध्यवासिनी सिन्हा और उनके साथियों को।

विंध्यवासिनी सिन्हा और उनके सहेलियों के गाए इस भोजपुरी लोकगीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश खिदमत है गज़ल का प्रोग्राम महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज़ से। डॉक्टर सफ़ी हसन हैं नगमा निगार और मौशिकी हरिहरन की है। एल्बम का नाम है करार।

अभी आप सुन रहे थे करार एल्बम का, हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं परछाइयाँ एल्बम से एक गज़ल, गुलाम अली की आवाज़ है। मौलाना हशरत मोहिनी हैं नगमा निगार और मौशिकी खुद गुलाम अली की है।

गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।

0: हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोर गुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल विश्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का

ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

आंखों में सपने लिए एल्बम का ये गीत लीजिए, सुनिए। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, भी विजय हैं गीतकार और नीलू निरंजन हैं संगीतकार।

अब के बरस एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनीता राव की आवाज़ में। और अब आइए अविदा एल्बम का एक गीत हम आपको सुनवाएं।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गानों, हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

हजरात वारिस शाह की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, और अब इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम यहीं

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

श्रोता दोस्तों, रात की यह खामोश फिजा चांदनी की नरम रोशनी और दिल को सुकून देने वाले मधुर गीत, इन्हीं हसीन लम्हों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ देर के लिए दिन भर की भाग दौड़ को पीछे छोड़ दें और हिंदी फिल्म संगीत की सुनहरी दुनिया में खो जाएं, जहां हर धुन एक एहसास है और हर गीत दिल की एक अनकही कहानी। मोहब्बत जब अपने सबसे खूबसूरत एहसास को अल्फाज में पिरोती है तो गीत जन्म लेते हैं, और जब उन अल्फाज को सुरों का साथ मिलता है तो वे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक दिलकश नगमा।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनके हर शब्द में अपनापन, हर सुर में संवेदनाएं और हर धुन में जीवन की सच्चाई झलकती है। अब पेश है ऐसा ही एक कालजयी गीत जो हमें याद दिलाता है कि जीवन सुख दुख, उम्मीद और मुस्कान का सुंदर संगम है। जिंदगी की राह में हर मोड़ मुस्कुराता रहे, दिल में प्यार का दिया हर पल जगमगाता रहे, गीतों की ये महफिल यूं ही महकती रहे, हर सुर के साथ आपका सफर गुनगुनाता रहे। आखिर क्या गुनगुनाता रहे? जी हां, यही।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं। कुछ लोग दूर होकर भी हर धड़कन के सबसे सबसे करीब रहते हैं, है ना जी। जब किसी की याद हर पल दिल में बस जाए तो हर धुन उसी का नाम गुनगुनाती है। कहने का मतलब कि हर धड़कन में तेरा ही नाम सुनाई देता है, हर खामोशी में तेरा पैगाम दिखाई देता है। दूर रहकर भी तू इतना करीब है मेरे कि पल पल दिल के पास तेरा एहसास दिखाई देता है।

दोस्तों, कभी कभी रिश्ते दूरियों में भी अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल है। कुछ लोग साथ नहीं होते, फिर भी हर धड़कन में बसते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ यादें उम्र भर हमारे हमसफर बनी रहती है। ऐसे ही एहसासों और खामोश मोहब्बत और मीठी यादों से लबरेज है ये अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मतलब ये है दोस्तों कि मोहब्बत का हर रंग मुकम्मल होना जरूरी तो नहीं, हर ख्वाब का हकीकत में बदलना जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते बस दिल की धड़कनों में महफूज रहते हैं और उन्हीं की खामोश खुशबू को समर्पित है यह खूबसूरत नगमा। लीजिए, सुनिए।

सुरों का ये सफर यूं ही चलता रहे, गीतों से हर दिल महकता रहे, फिर होगी मुलाकात नई धुनों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। आज की सुरीली महफिल को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि हिंदी फिल्म संगीत का ये मधुर धुनें आपके दिल को छू गई होंगी और आपकी शाम को यादगार बनाई गई होंगी। तो इसी के साथ अपने

एफएम के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी आप सुनेंगे कल सुबह 8:20 पर। 8:45 पर सुनिए कल आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका कल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 9:30 पर सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा पूर्वाह्न 10:00। कल पूर्वाह्न 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुनर्नवा। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी की प्रस्तुति होगी कल पूर्वाह्न 10:30 पर। पूर्वाह्न 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11:00 आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में शामिल होंगे और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से कल शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन रिले किया जाएगा। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गाँव घर। सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:40 पर। शाम 7:00 कल आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। रोज की तरह कल भी शाम 7:15 पर आप सुनेंगे गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको कल लिए चलेंगे शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र। कल शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइसी कार्यक्रम हेलो मन पसंद। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या कल भी हम रिले करेंगे रात्रि 8:45 पर। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से कल रात 9:00 हम प्रस्तुत करेंगे शास्त्रीय गान पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे कल रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:00 वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।